मीडियम भी 254.45 मीटर अर्थात 1179 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई सन 2026। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। श्रोताओं नमस्कार।

0: मीडियम वेव पर ही आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 6:10 होने वाले हैं, माफ कीजिएगा 6 बजने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात

0: partnership. Dr. Jaishankar arrived in Bahrain from Qatar on the second leg of his four-nation visit to the Gulf. In football, Spain stormed into quarterfinals of FIFA World Cup, beating Portugal 1-0 in the round of 16 clash at the Dallas Stadium last night. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम। आरंभ करते हैं समूह स्वर में मातृवंदना से, रचना है मुकुंद कौशल की।

0: इस भजन के साथ ही आज का सुप्रभातम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। 6:35 हुए हैं। किसान भाई सुने कृषि संकेत। आज का विषय है फलों के बागों का प्रबंधन।
1: किसान भाई, फलन के बगीचा तैयार करने के पहले किस्म के चयन करना बहुत जरूरी है, जो उनसे अधिक उपज, फल के पकाई के समय, पौधे के जल्दी फलन के अवस्था में आउ सहित कीट रोग के कम प्रभावित करे वाली उचित किस्म के चयन करब जरूरी है। आम, पूसा श्रेष्ठ या संकर किस्म के अनियमित फल दे वाली किस्म है, जौने की विकास आम्रपाली और सेंसेशन के संस्करण से भा है। पौधा जौन होता एक मध्यम आकार के होता, फल आकर्षक लाल रंग के होता। पौधा के आधार पर यह किस्म उत्तर भारत के व्यवसायिक किस्म दशहरी की तुलना में अधिक फल देती। दूसरा किस्म है पूसा लालिमा, नियमित फल दे वाली या किस्म आए, जौने के पौधा चौथे वर्ष से फल दे लागत हाँ, जल्द पकाई वाली किस्म आए। और यह फल उत्तर भारत में जून के प्रथम पखवाड़ा में आवत है और फल मध्यम आकार के लाल आकर्षक होते है। और किस्म है यह अंबिका, यह लखनऊ से विकसित संकर एवं नियमित फल दे वाली आए, देर से पकाई वाली और फल के वजन 250 से 350 ग्राम तक के होता है। 10 साल के पौधा के उत्पादन 80 किलो प्रति पौधा के हिसाब से होता है। दशहरी इंचामन, यह प्रसिद्ध किस्म दशहरी से विकसित भय है। एक फल की गुणवत्ता दशहरी के समान है और उत्पादन दशहरी से 38% अधिक है। अमरूद, सेब से अमरूद का विकसित किंगा है और एकर जौन उद्देश्य चाहिए ताजा और संस्करण खातिर उपयुक्त है। लगभग 6 वर्ष के पौधा से 100 किलो फलन के उत्पादन होत है। एक जौन फल के वजन है 185 से 200 ग्राम तक होत है और फल के जौन लालमा लिए होत है, गूदा गुलाबी रंग के होत है। दूसरा है अर्का अमूल्य, यह अमरूद के अच्छी किस्म है। एकर फल गोलाकार के होत है, एकर जौन चमड़ी होती है चिकनी और पीले रंग के होती और जौन फल के वजन है 180 से 200 ग्राम तक होत है। अर्का मृदुला, यह अमरूद के फसल इलाहाबाद के सफेदा से विकसित किए गए है और एकर पौधा जौन है मध्यम आकार के होत है। फल के वजन 180 ग्राम और एकर बीज नरम होत है। यह जेली बनवाई की निता अच्छी किस्म मानी जाती। अर्का किरण, यह अमरूद के फल के वजन 90 से 120 ग्राम होत है, गुदा गहरा गुलाबी रंग के होत है तथा फल गुणवत्ता में अच्छा होत है। पंत प्रभात, एकर फल के बीज नरम और फल के गुणवत्ता अच्छी होती। अनार, यह संकर किस्म के अनार है। एक फल के त्वचा के रंग हरा धारी से लाल भूरा होत है, छिलका पतला, फल के अंदर गहरा लाल बीज चोल स्वाद में मीठ होता है और फल के वजन 270 ग्राम के करीब होता है और उपज 16 से 18 टन प्रति हेक्टेयर होती। यह हल्की जलवायु के निदा बेहतर किस्म के है। अनार के दूसरा किस्म है भगवा, यह किसान के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाए वाली फसल है। एक फल बड़े 200 से 400 ग्राम, छिलका के रंग भगवा लाल, बीज चोल बड़े बड़े लाल स्वाद में मीठ होता है और फूल आवे के बाद 180 से 190 दिन तक पक जात। नींबू, नींबू जौन है या नींबू के एक ठे किस्म है पूसा विनय, या अधिक उपज दे वाली किस्म है जो वर्ष भर फल देती। अगस्त सितंबर और मार्च अप्रैल में अधिक फल आवा था। फल पकाई पर पीला हो जाता है और रस 64% अम्लता एक 7.7% होती। यह व्यवसायिक रूप से एक उपयोग की जाता है। आमला कंचन NA4, कंचन NA4, यह फल बड़ा और चिकना होता है, जल्दी पकाई वाली किस्म है। अचार और त्रिफला बनवे में एकर उपयोग की जाता है और एकर उपज प्रति पौधा के हिसाब से 100 किलोग्राम होती। आमला के दूसरे किस्म ही कृष्ण AN5, पौधा की ऊंचाई थोड़ा का कम होती, फल जल्दी पका था, ये फल में रेशा कम होता, कसैलापन ज्यादा होता है और एकर उपज प्रति पौधा 100 किलोग्राम होती और यह मुरब्बा बनवे खातिर बहुत निकाह होता है। अमृत NA7, एकर पौधा छोट होता, यह उच्च घनत्व में लगावे की चिंता सही किस्म है और तीसरे वर्ष यह फल दे लागत है और एकर उपज 100 से 150 किलो प्रति पौधा के हिसाब से होता। पपीता, पपीता के जौन किस्म ही अर्का प्रभात, यह एक थे गाइनोडियोसिस किस्म है। एकर एकर ऊंचाई लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर होती और फल के वजन 900 से 1200 ग्राम होता है। पौधा से एकर उपज 90 से 100 किलोग्राम तक होती। पप बीज के उत्पादन आसानी से किन जा सकता है। एकर फल छोटे आकार के होता और 600 से 800 ग्राम के बीच एकर वजन होता है और प्रति पौधा एकर उत्पादन 55 से 65 किलोग्राम होता है।
0: कृषि संकेत के अंतर्गत किसान भाई अभी सुन रहे थे फलों के बाग का प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी। आकाशवाणी रीवा से अब प्रस्तुत है रामचरितमानस से पाठ।

राजा जनक के महल में बेटियों की विदा का करुण हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है। लगता है जैसे करुणा और विरह ने वहां डेरा डाल दिया है। सीता ने जिन पक्षियों को सोने के पिंजरों में पाल पोस कर सिखाया पढ़ाया था, वे मानो पूछ रहे हैं कि वैदेही कहां हैं। और यदि पशु पक्षी इस प्रकार विकल हैं, तो मनुष्यों की दशा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजा जनक परम वैराग्यवान पुरुष थे, किंतु इस अवसर पर सीता को देख उनका धैर्य भी साथ छोड़ गया। जानकी को हृदय से लगाकर वो फूट पड़े। भावना ने ज्ञान और वैराग्य के बांध तोड़ दिए। मंत्रीगण उन्हें धीरज बंधा रहे हैं। मुहूर्त देखकर सुंदर सजीव ही पालकियों में कन्याओं को बिठाया गया। पिता ने उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति की सीख दी। ब्राह्मणों की चरण धूली माथे पर लेकर राजा दशरथ ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दल बल समेत अयोध्या के लिए चल पड़े। विदा के क्षणों में अधिक से अधिक समय तक उनके साथ रहने को आतुर राजा जनक उनके साथ हो लिए। विचित्र दृश्य है। देवता हर्षित हो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं मंगल गीत गा रही हैं। कौशलपति दशरथ बार बार जनक जी से लौट जाने का आग्रह करते हैं, किंतु प्रेमवश वो लौटना नहीं चाहते।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। गायक स्वर था श्रीकांत पारगांवकर का। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कार्यक्रम चौपाल के अंतर्गत शाम 7:21 पर सुनिएगा शैलेंद्र सिंह से की गई भेंटवार्ता, बकरियों में पीपीआर रोग। साथ में होंगे कुछ लोकगीत। सुगम संगीत का प्रसारण होगा 10:05 पर। इसमें आप सुनेंगे गीत और गजलें। फिल्म संगीत आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं 7:20 पर और 8:30 पर।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतला शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्र के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमरीका के टेक्सास के डलास शहर में स्पेन के पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक और अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से हो रहा है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by V.C. Pramod.

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को मिलेगी मजबूती। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ाएंगे किसानों की आमदनी। और मौसम विभाग के अनुसार आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। इससे भारत और इंडोनेशिया अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तैयार है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से समुद्री और आर्थिक संबंध सुदृढ़ होंगे और उभरते क्षेत्रों में सहयोग गहरा होगा। राजदूत ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंध सकारात्मक दिशा में अग्रसर हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इस प्रवृत्ति को और बल देगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की पहल की घोषणा कर सकते हैं। इनमें रक्षा और समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, खाद्य सुरक्षा और उर्वरक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि वे आगामी रथ यात्रा के लिए रेलवे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे ताकि सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि रेलवे इस साल ओणम उत्सव के दौरान 100 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओणम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जुड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की आमदनी केवल एक फसल से नहीं बल्कि उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार खेती के साथ साथ पशुपालन को विशेष बढ़ावा दे रही है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल ग्वालियर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्नत कृषि पर हुई संभागीय कार्यशाला में मौजूद किसानों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कार्यशाला में जैविक और प्राकृतिक खेती पर किसानों के अनुभव सुने। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान

मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। हम अगले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने कल भोपाल में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने दतिया विधानसभा उपचुनाव के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन का कार्य शुरू हो चुका है। 13 जुलाई नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी। 14 जुलाई को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 16 जुलाई को नाम निर्देशन पत्र की वापसी की तारीख है। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी। उन्होंने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा है कि आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करें। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से कल मध्यप्रदेश संवर्ग 2025 बैच के चयनित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मकवाणा ने कहा कि प्रशिक्षण पूरी तन्मयता से प्राप्त करें ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का उत्कृष्ट क्रियान्वयन कर सकें। उन्होंने 9 चयनित अधिकारियों से कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल एक पद नहीं बल्कि जनता की सेवा का दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नए आपराधिक कानून, साइबर सुरक्षा, साइबर फ्रॉड, नारकोटिक्स और नशा मुक्ति जैसे विषय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी और अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in पर परिणाम देख सकेंगे। इसके साथ ही इसी पोर्टल पर शिक्षक, संस्था प्रमुख अपनी शाला का विद्यार्थी वार परिणाम भी देख सकेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने संचालित शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इस वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की गई है। इसके लिए विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से विशेष हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। प्रदेश में भारी बारिश का सिस्टम सक्रिय है, जिसके चलते पिछले 6 दिनों से राज्य के अधिकांश जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में अब तक सामान्य से 1% बारिश कम हुई है, जबकि जून में यह 33% कम थी। अब तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में सामान्य से अधिक वर्षा हो रही है। देवास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बारिश हुई है। जकार्ता में अंडर-23 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज 50 किलोग्राम भार वर्ग के एशियाई चैंपियन विश्वनाथ सुरेश ने उज्बेकिस्तान के अमीर बेग इस्माइलोव को हराकर भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रखा। पुरुष वर्ग के 55 किलोग्राम भार वर्ग में गंगा ने मंगोलिया के अमगाला नबातर बुलगुंग को 5-0 से हराया। वहीं महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में तनु ने कोरिया की रिंगयोंग किम को 5-0 से पराजित किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में कल विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पन्ना जिले में बीती रात हुई लगातार बारिश के चलते केन, मिनासन और पत्नी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। झाबुआ के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में एकलव्य योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हेतु 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रारंभ हो गई है। सतना जिले में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा लगभग 100 स्ट्रीट डॉग्स का एंटी रेबीज टीकाकरण किया गया। मंडला जिले की घोघरी तहसील में कल आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज 7 जुलाई है। आज भारतीय सिनेमा की दो महान विभूतियों को स्मरण करने का दिवस है। महान संगीतकार अनिल बिस्वास की आज जयंती है और

हिंदी सिनेमा का युग पुरुष दिलीप कुमार साहब की पुण्यतिथि। इन्हें हम ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जानते हैं। अनिल विश्वास को हिंदी फिल्म संगीत का एक ऐसा शिल्पकार माना जाता है जिन्होंने संगीत को नई संवेदना, मधुरता और कलात्मक ऊंचाइयां प्रदान की। उनकी धुनों में भावनाओं की गहराई और आत्मा को छू लेने वाली सादगी दिखाई देती है, तो दूसरी ओर दिलीप कुमार ने अपने सहज, प्रभावशाली और भावपूर्ण अभिनय से भारतीय सिनेमा में अभिनय की नई परंपरा स्थापित की। आइए अनिल विश्वास की जयंती और दिलीप कुमार साहब की पुण्यतिथि पर इन दोनों महान कलाकारों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और सुनते हैं उनके स्मृतियों के जीवंत करते ये सदाबहार गीत। पहला गीत है फिल्म तराना से।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: 10 लाख की लॉटरी मुझे। वाओ।
4: फर्जी ऑफर से

0: सावधान।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, जब अनिल विश्वास की संगीत बद्ध फिल्मों में दिलीप कुमार पर्दे पर दिखाई देते हैं तो संगीत और अभिनय का एक अनुपम संगम जन्म लेता है। अमर गीत सीने में सुलगते हैं अरमा, आंखों में उदासी छाई है, प्रेम और विरह की भावनाओं को जिस मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त करता है वह आज भी श्रोताओं के मन को छू जाता है। इसी तरह का सदाबहार गीत ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई न हो, अपने दर्द मधुरता और आत्मीय अभिव्यक्ति के कारण दशकों बाद भी उतना ही प्रभावशाली लगता है। तो आइए सुने फिल्म आरजू का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, ये गीत केवल शब्द या केवल धुनें नहीं हैं, बल्कि भारतीय फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की अमूल्य धरोहर हैं। अनिल विश्वास की रचनात्मक प्रतिभा और दिलीप कुमार की सशक्त उपस्थिति ने इन्हें कालजयी बना दिया है। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 254.5 मीटर अर्थात 1179 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 7:30 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आपका स्वागत है। सरबजीत कौर के साथ मैं हूं सरफिरोजी। श्रोताओं, हर साल 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस मनाया जाता है। ये दिन केवल किसी से माफी मांगने या दूसरों को माफ करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने मन में जमा गुस्सा, शिकायत और कड़वाहट को छोड़कर मानसिक शांति की ओर बढ़ने का भी अवसर है। परिवार, दोस्ती या कार्यस्थल, हर जगह संवाद और क्षमा रिश्तों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो अगर आप में भी अपने किसी करीबी के प्रति किसी तरह की नाराजगी है, तो आज विश्व क्षमा दिवस पर उन्हें माफ करके उन्हें अपना कर एक नई शुरुआत करिए।
1: Yes, Sir Ferozi, you very beautifully described today's special day, and as has been rightly said, to err is human, to forgive is divine. And indeed, relationships, networkings are all very, very important.
0: जी.
1: So we must do our best to go ahead with them, to maintain them at the best levels.
0: बिल्कुल.
1: Meanwhile, we have connected today with our listeners in today's Aaj Savere, wherein the next 30 minutes are going to be packed with news, Metro City updates, and of course, historical information to let you know what makes 7th of July so, so special. So without much ado, let's begin the program with the news headlines.
0: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक यात्रा के दूसरे दिन इंडोनेशिया में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। दिन की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के बीच एक सीमित बैठक होगी, जिसके बाद प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता होगी। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार विमर्श होगा। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान का भी साक्षी बनेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बना दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने सहकारिता क्षेत्र के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों की पहचान की है।
1: अमित द पॉलिटिकल स्टॉर्म इंटेंसिफाइंग इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके, द जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी जेएएसी हैज इशूड अ 48-hour डेडलाइन टू द गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद, थ्रेटनिंग अ ग्रैंड एंड फाइनल रिस्पॉन्स ऑन July 9th इफ देयर कंडीशंस रिमेन अनफुलफिल्ड। In a formal declaration, the committee announced that its current sit-in protest will persist indefinitely until all of its demands are satisfied. The committee has called upon residents throughout POK and members of the Kashmiri diaspora to participate in the protest scheduled for July 9th.
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। जनजातीय कार्य मंत्री जोएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। ये मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा।
1: Goa's motorcycle taxi service is taking a digital leap. The newly launched Manje app aims to make booking motorcycle taxis easier while creating new opportunities for Goa's pilot community through technology and government support.
2: Goa's motorcycle taxi sector has entered the digital era with the launch of Manje app, developed through Goa Motorcycle Taxi Riders Association in collaboration with Graceful Goa Super App Limited and the Directorate of Transport. The app allows commuters across Goa to conveniently book motorcycle taxis using their smartphones. Transport Minister Movin Gudino welcomed the initiative and assured full government support. He urged motorcycle pilots to adopt modern technology to remain competitive and said the app has received no opposition. The minister also announced a revised government support scheme under which pilots can work

0: International Export Excellence Awards 2024-25 in New Delhi, Mr. Goyal added that several countries, including Ecuador, are also keen to conclude free trade agreements with India, creating new opportunities for Indian exporters. Indian wrestlers finished with an impressive haul of 20 medals, including 4 gold, 7 silver and 9 bronze at the Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya, Thailand. India ensured consistent podium finishes across multiple weight divisions throughout the championship, securing top 3 overall team rankings in both women's wrestling and men's freestyle.
1: सरबजीत, देश दुनिया की हलचल के बाद अब वक्त है कि अपनी श्रोताओं को महानगरों का भी हाल दिया जाए, तो कहां से शुरू कर रहे हैं?
0: वेल, लेट्स बिगिन विद द न्यूज़ फ्रॉम चेन्नई. सरफरोजी
1: जी,
0: एन इंडियन एयरफोर्स चेतक हेलीकॉप्टर मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड इन तमिलनाडुज चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट ऑन मंडे मॉर्निंग आफ्टर डेवलपिंग अ टेक्निकल स्नैग ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग सॉर्टी. अकॉर्डिंग टू पुलिस, पायलट्स विशाल भास्कर एंड अनदर ऑफिसर डिटेक्टेड द टेक्निकल ग्लिच अराउंड 9 AM while flying the helicopter and safely landed it in farmland near Vandalur. Further investigation into the incident is underway. Tamil Nadu Minister C. Joseph Vijay inspected the desalination plant at Perur in Chengalpet district and asked officials to complete the work in the stipulated time to meet the region's growing drinking water needs. The desalination plant is under construction, 400 million litre per day. The plant is being built at an estimated cost of around 5,814 crore to strengthen Chennai's long-term drinking water supply. Once commissioned, the Peru desalination plant will benefit nearly 2.267 million people residing in areas under the Greater Chennai Corporation, Tambaram City Municipal Corporation and 20 neighbouring village panchayats. And Sarfarozi, what's the buzz from Delhi today?
1: जी, बात कर रहे हैं सरबजीत. NDMC से जुड़ी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC आज 34 स्थानों पर पौधारोपण अभियान आयोजित करेगी. NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का एक अवसर है.
2: NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि दिल्ली सरकार के 70 लाख वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा. इस अभियान के अंतर्गत लगभग 600 वृक्ष और 50,000 झाड़ियां लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए NDMC द्वारा 50,000 से अधिक गड्ढे पूर्व तैयार किए जा चुके हैं. श्री चहल ने बताया कि अभियान के तहत पीपल, नीम, जामुन, इमली, चंपा, अशोक, गुलमोहर सहित अनेक देशी और पर्यावरण अनुकूल वृक्ष लगाए जाएंगे. इसके अतिरिक्त हिमालया, कैनी लिली, चांदरी और अन्य सजावटी एवं देशी प्रजातियों की झाड़ियां भी रोपी जाएंगी. श्री चहल ने कहा कि NDMC के लिए वृक्षारोपण केवल एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सतत जन आंदोलन है. शिवांग मिश्रा.
0: And let's go to Bengaluru now. Karnataka is keen to strengthen investment ties with Hong Kong by promoting partnerships in electronic system design and manufacturing startups, semiconductors, fintech, biotechnology, clean mobility and advanced manufacturing, large and medium industries minister M.B. Patil said yesterday. Speaking after the meeting, Rajesh Narayan Nayak, Council General of India in Hong Kong and Macau, SARs Patil said, the state plans to showcase its strength in chip design, electronics, IoT technologies and its vibrant startup ecosystem to investors and venture capital funds in Hong Kong. And what's the news from Mumbai today, Sir Firozi?
1: जी सरबजीत, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश और बाढ़ की आशंका के मद्देनजर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागरिकों से सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों को पूरा सहयोग देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और 2400 घंटे नियंत्रण कक्ष कार्यरत है. नागरिकों को सलाह दी गई है कि किसी भी संकट की स्थिति में आपातकालीन हेल्पलाइन से संपर्क करें और सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रसारित अपुष्ट जानकारी पर भरोसा ना करें. और सरबजीत, आपके पास हैदराबाद से क्या खबर है?
0: जी, द वाइस चांसलर ऑफ मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सईद एनुल हसन इनॉग्रेटेड अ मंथ लॉन्ग फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम.

0: on Monday, emphasizing that educators shape both the intellect and character of their students. Organized by the UGC Malviya Mission Teacher Training Center, the initiative aims to prepare newly appointed faculty members for excellence in teaching, research and academic leadership. During his inaugural address, Professor Hassan observed that teaching extends far beyond the classroom, noting that students closely emulate the conduct, values and professional ethics of their instructors.
1: और अब रुख कर लेते हैं सरबजीत अपने आखिरी महानगर की ओर. बात कर रहे हैं कोलकाता की. शहरी विकास और नगर निगम विभाग ने उन्नत और स्वच्छ कोलकाता के निर्माण के लिए मुखोमुखी पहल शुरू की है. कोलकाता नगर निगम क्षेत्र के एक समर्पित टोल फ्री नंबर के माध्यम से निवासी अब सीधे शहरी विकास और नगर निगम मंत्री को समस्याओं, शिकायतों या सुझावों से अवगत करा सकते हैं. श्रोताओं, अब आपको देंगे महानगरों के मौसम की जानकारी. शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से. राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा की संभावना है. न्यूनतम तापमान के 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान के 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान के 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. कोलकाता में भी आंधी के साथ बारिश की संभावना है. तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. सरबजीत, आपके पास महानगरों के मौसम की क्या जानकारी
0: जी,
1: है?
0: जी, एंड आई मस्ट ऐड हियर दैट ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी नीड टू बी रेडी विद आवर अम्ब्रेलास टुडे. सो चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई. द मिनिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस. मैक्सिमम मे गो अप टू 38 डिग्रीज. बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन. मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस. मैक्सिमम 31 डिग्रीज. हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट rain or drizzle. The temperatures will hover between a minimum of 25 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
1: सरबजीत, अब वक्त हो चला है इतिहास के पन्नों को पलटने का और जानने का कि आज यानी 7 जुलाई का जो दिन है वो इतिहास में क्यों दर्ज हो गया.
0: बिल्कुल, इनफैक्ट द मोस्ट यू नो इंटरेस्टिंग सेगमेंट ऑफ आज सवेरे.
1: तो सबसे पहले अपने श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं साल 1799 में, जब महाराजा रणजीत सिंह ने आज ही के दिन लाहौर पर कब्जा किया.
0: On this day in the year 1802, The Wasp, a first comic book, was published in Hudson in New York.
1: और 1896 में ल्यूमियर ब्रदर्स ने आज ही के दिन बॉम्बे के वॉटसन होटल में जनता को 6 लघु फिल्में दिखाकर भारत की पहली सिनेमा स्क्रीनिंग आयोजित की.
0: 7 July 1898, the annexation of Hawaii was completed as the United States formally annexed Hawaii through the New Lenz Resolution. 1928, on this day, for the first time, sliced bread was sold by the Chillicothe Baking Company, Missouri, by using the machine invented by Otto Frederick Rohweder. This act is described as the greatest forward step in the baking industry since bread was wrapped.
1: और इसके लगभग 2 साल बाद 1930 में कोलोराडो नदी पर हूवर बांध का निर्माण आधिकारिक तौर पर आज ही के दिन शुरू हुआ. 1948 में आज ही के दिन दामोदर घाटी निगम की स्थापना बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में की गई.
0: 1978, on this day, Solomon Islands gained independence from the United Kingdom. And 7th July 1981, Sandra Day O'Connor was nominated by Ronald Reagan, becoming the first woman nominated to the US Supreme Court.
1: और 1998 में आज ही के दिन पंडित विश्व मोहन भट्ट को UN द्वारा प्रतिष्ठित अमेरिका के दशक के सबसे प्रशंसित व्यक्ति का सम्मान दिया गया. श्रोताओं, अब समय हो चला है कुछ विशेष महानुभवों की पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन के बारे में बात करने का.
0: We begin this segment by paying our solemn tributes to Captain Vikram Batra, an officer of the Indian Army awarded with the Paramveer Chakra. Captain Batra led one of the toughest operations in mountain warfare in Indian history. Captain Batra died on this

0: This day in the year 1999, at the young age of 24 in Kargil, Jammu and Kashmir.
1: विक्रम बत्रा की शहादत के बाद पॉइंट 48-75 चोटी को बत्रा टॉप का नाम दिया गया. उन्हें उनकी बहादुरी के कारण शेरशाह के नाम से भी बुलाया जाता था. कारगिल युद्ध के हीरो के अदम्य साहस और वीरता की कहानियां आज भी हमारी रगों में जोश भर देती हैं. उन्होंने युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन का नेतृत्व किया.
0: Listeners, we are remembering today the great veteran, Dilip Kumar, actor, writer and film producer. Before we go and delve into any further details about this great man, we'll first hear a song picturized on Dilip Kumar.

दिलीप कुमार ने अपनी दमदार अदाकारी के दम पर इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपने 5 दशकों के करियर में अभिनेता ने हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी और ट्रेजेडी किंग का नाम भी इन्हें मिला। अभिनेता के जरिए निभाए गए दमदार किरदार आज तक नए कलाकारों के लिए अदाकारी का स्कूल माने जाते हैं। इनकी मुख्य फिल्मों में मुगले आजम, देवदास, राम और श्याम, नया दौर, मधुमति, गंगा जमुना, क्रांति, कर्मा और सौदागर शामिल हैं। इन्हें अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

0: आज केदारनाथ सिंह जी की भी जयंती है। ये हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि और साहित्यकार थे। वे अज्ञ द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के कवि रहे। भारतीय ज्ञानपीठ ने उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया था। इसके अलावा उन्हें व्यास सम्मान, मध्य प्रदेश का मैथिली शरण गुप्त सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती सम्मान, बिहार का दिनकर सम्मान तथा केरल का कुमार आशान सम्मान प्राप्त हुआ। केदारनाथ सिंह की प्रमुख काव्य कृतियां जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, उत्तर कबीर, टॉल्स्टॉय और साइकिल और बाघ हैं। इनकी प्रमुख गद्य कृतियां कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान और मेरे समय के शब्द हैं।
1: लिसनर्स, वी आर रिमेम्बरिंग टुडे मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाली। Mohammad Baraktullah Bhopali was a revolutionary. He hailed from Bhopal and Baraktullah fought from outside India. His methodology was with fiery speeches and revolutionary writings in leading newspapers for the independence of India. While in England, Baraktullah came in close contact with Lala Hardayal and Raja Mahendra Pratap. Baraktullah became a friend of Afghan Emir and the editor of the Kabul newspaper Siraj-ul-Akbar.
0: आज हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की भी जयंती है। इन्होंने कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर जयपुर वेधशाला और उसके निर्माता नामक अंग्रेजी पुस्तक की रचना की थी। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के गुलेर गांव में हुआ था।
1: And Sarfarozi, today is the birth anniversary of the great Anil Krishna Biswas. Anil Biswas was a music director, playback singer, and apart from this, he was the pioneers of bringing the first Indian orchestra of 12 pieces and introducing orchestral music and full-blooded choral effects into Indian cinema. I'm sure, Sarfarozi, you've got some numbers from him.
0: जी बिल्कुल.

जी श्रोताओं, आज भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी का भी जन्मदिन है। धोनी की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर वन का ताज हासिल किया। सबसे पहले उन्होंने भारत को T20 विश्व कप 2007 में जीत दिलाई, फिर टेस्ट और वनडे में भी भारत को नंबर एक पर पहुंचाया। इसके बाद

बाद 28 साल बाद 2011 में भारत को वनडे विश्व कप का खिताब मिला। बुद्धिमान कप्तानी, मैदान पर शांत रवैया और किसी भी तरह का जोखिम उठाने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले धोनी को युवाओं के बीच एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। साल 2016 में इनके जीवन पर एक फिल्म का भी निर्माण हुआ था। हम आपको उसी फिल्म का एक गीत सुना रहे हैं।

0: गुरु हर किशन सिंह जी की भी जयंती है। ये सिखों के आठवें गुरु हैं। ये 6 अक्टूबर 1661 को गुरु बने और 1664 तक इस पद पर रहे, लेकिन वो बहुत ज्ञानी थे और हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता के ज्ञान से अपने आसपास वाले ब्राह्मणों को आश्चर्यचकित कर देते थे। किशन सिंह का जन्म 7 जुलाई 1656 को कीरतपुर शिवालिक पहाड़ियों में हुआ था। श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। दीजिए इजाजत सर फिरोजी और सरबजीत कौर को आज सवेरे के आज के अंक को यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
1: यस लिसनर्स, स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।
0: नमस्कार।

0: रेन बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners.
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
2: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको

0: ये 5 साल में किया है।
1: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने

0: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
1: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम सीएससी की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं, 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं, 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6th स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष

0: फ्री स्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा। अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad. Warn of grand and final action on July 9th if demands are not met.

रेडियम वेग 254.45 मीटर अर्थात 1179 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 8:30 हुए हैं। पेश है देश गान। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं देशभक्ति गीतों पर आधारित फिल्म संगीत। आरंभ में सुनिए जावेद अख्तर का लिखा गीत एआर रहमान के संगीत निर्देशन में। फिल्म लगान के इस गीत में आवाज है एआर रहमान, श्रीनिवास और साथियों की।

अब आइए सुनते हैं प्रसून जोशी का लिखा गीत के एस चित्रा और दलेर मेहंदी की आवाज में। फिल्म का नाम है रंग दे बसंती और इस गीत का संगीत तैयार किया है ए आर रहमान ने।

अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत उदित नारायण और सोनू निगम की आवाजों में। समीर के गीत की धुन बनाई है अनु मलिक ने।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: भाई, एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
3: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
2: मतलब?
3: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
2: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
4: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: उदित नारायण, महालक्ष्मी, शंकर महादेवन और डोमिनिक की आवाज में अब आइए सुनते हैं फिल्म 10 का गीत। समीर के गीत की धुन तैयार की है शंकर एहसान लॉय ने।

लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रथा मजुमदार की आवाजों में अब आइए सुनते हैं फिल्म वीर जारा का गीत। जावेद अख्तर के गीत को संगीत से संवारा है मदन मोहन ने।

शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में अब आइए सुनते हैं जावेद अख्तर का लिखा गीत। फिल्म लक्ष्य के इस गीत में आवाजें हैं हरिहरन, कुणाल गांजावाला, रूप कुमार राठौर, शंकर महादेवन, सोनू निगम और विजय प्रकाश की।

अलकायदनिक की आवाज में अब आइए सुनते हैं एलओसी कारगिल फिल्म का गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार अनु मलिक।

0: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे
1: बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम? कुमार सानू आदित्य नारायण की आवाज में, अब आइए सुनते हैं जावेद अख्तर का लिखा गीत। फिल्म दिल दिल जले के इस गीत को संगीत से संवारा है अनु मलिक ने।
2: इस देश से

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम देशगान अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 9:30 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: और वेब से ओटीटी पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम शब्द सागर।
2: नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तु कामह सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। जब शब्द नहीं थे, जब भाषा नहीं थी, जब सभ्यताओं के नाम तक नहीं थे, तब भी एक लय थी, एक स्पंदन, एक कंपन, एक दिव्य गति। और उसी गति से जन्मा था सृष्टि का नृत्य। भारतीय चिंतन कहता है कि यह ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह निरंतर गतिमान है। नक्षत्र घूम रहे हैं, ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, श्वास चल रही है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि स्वयं एक नृत्य है। और इस विराट नृत्य के अधिष्ठाता हैं श्री महादेव नटराज जी। कहा जाता है कि जब नटराज जी ने अपने आनंद

तांडव की पूर्णता पर डमरू का निनाद किया, तब वह केवल ध्वनि नहीं थी, वह सृष्टि की प्रथम अभिव्यक्ति थी, जिससे 14 माहेश्वर सूत अ ई ऊन रिलिक एऊं एऊच हय वरट लण यम गण नम झभय घड़ धश जब गड़ धश खफ छट थ चट तव कपय शशसर हल प्रकट हुए। विचार कीजिए, जिस संस्कृति ने नृत्य को केवल गति का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे ध्वनि, भाषा, व्याकरण और अभिव्यक्ति की उत्पत्ति से जोड़ दिया हो, उस संस्कृति का शास्त्रीय नृत्य स्वाभाविक रूप से सीमाओं में कैसे बंध सकता है? शायद इसी कारण भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जन्म किसी रंगमंच पर नहीं हुआ, उसका जन्म चेतना में हुआ। और जो कला चेतना में जन्म लेती है, वह भूगोल की सीमाओं में नहीं रहती। इसीलिए आज जब भारत का शास्त्रीय नृत्य वैश्विक मंच पर पहुंचता है, तो वह केवल घुंघरुओं की ध्वनि नहीं ले जाता, वह अपने साथ सहस्राब्दियों की सांस्कृतिक स्मृति, दार्शनिक गहराई और आध्यात्मिक दृष्टि भी लेकर जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल शरीर की गति नहीं है, यह नृत्य है जहाँ लय और ताल का शुद्ध सौंदर्य प्रकट होता है। यह नृत्य है जहाँ गति भावनाओं से संवाद करती है, और यह नाट्य है जहाँ संपूर्ण जीवन मंच पर जीवंत हो उठता है। इसीलिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य को समझने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि किसी विदेशी दर्शक को संस्कृत का एक भी शब्द न आता हो, यदि उसने कभी रामायण न पढ़ी हो, यदि वह श्री राधा, कृष्ण, शिव या पार्वती के नामों से भी अपरिचित हो, फिर भी यदि किसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति के अंत में उसकी आंखें नम हो जाएं, तो यह केवल कला की सफलता नहीं है, यह भारतीय संस्कृति की वैश्विक विजय है। गीतेन प्रियते देवो, नृत्येन प्रियते जनः, उभाभ्याम प्रियते लोको, धर्म कामार्थ सिद्धये। गीत से देवता प्रसन्न होते हैं, नृत्य से जनमानस प्रसन्न होते हैं, और दोनों मिलकर संपूर्ण लोक के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कला का उद्देश्य केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि लोक मंगल है, और जब कोई कला लोक मंगल से जुड़ जाती है, तब वह समय और भूगोल की सीमाओं से परे चली जाती है। यही भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक सफलता का रहस्य है। उसने कभी अपनी जड़ों को त्याग कर विश्व को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया, उसने स्वयं को बदल कर नहीं, स्वयं को समझ कर विश्व का सम्मान प्राप्त किया, और यही किसी भी संस्कृति की वास्तविक शक्ति होती है। वैश्वीकरण का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, वैश्वीकरण का अर्थ अपनी पहचान को इतना प्रखर बना देना है कि संपूर्ण विश्व उसे समझना चाहे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य ने विश्व को केवल अपनी कला नहीं दिखाई, उसने विश्व को भारतीय दर्शन का परिचय कराया। उसने बताया कि शरीर भी प्रार्थना कर सकता है, मौन भी बोल सकता है, गति भी ध्यान बन सकती है, और नृत्य भी मोक्ष का मार्ग हो सकता है। अंततः भारतीय शास्त्रीय नृत्य किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर मात्र नहीं है, यह मानवता की साझा चेतना की धरोहर है। यह उस सत्य का साक्ष्य है कि मनुष्य केवल तर्क से नहीं जीता, वह सौंदर्य, संवेदना और आध्यात्मिकता से भी जीता है। गंगा के तटों पर विकसित कथक से लेकर तमिल भूमि के भरतनाट्यम तक, उड़ीसा की त्रिभंगीमयी ओडिसी से लेकर आंध्र की कुचिपुड़ी तक, केरल के कथकली और मोहिनीअट्टम से लेकर मणिपुर के कोमल मणिपुरी तथा असम के आध्यात्मिक सत्रिया तक, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रत्येक धारा
अपनी क्षेत्रीय विशिष्टता

के साथ एक ही सांस्कृतिक महासागर में प्रवाहित होती है, और वह महासागर है भारतीयता। जब 20वीं शताब्दी में विश्व तेजी से बदल रहा था, औपनिवेशिक दृष्टिकोण भारत को रहस्य और रोमांच की भूमि के रूप में देखता था, परंतु कुछ कलाकार ऐसे थे जिन्होंने विश्व को बताया

0: उदय शंकर जी का, जिन्होंने पश्चिमी मंचों पर भारतीय नृत्य की आत्मा को प्रस्तुत किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारतीय नृत्य संग्रहालय की वस्तु नहीं है, वह जीवित है तथा विकसित हो सकता है और वह विश्व से संवाद भी कर सकता है। फिर आई श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी, जिन्होंने भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किया। उनके प्रयासों से भारतीय नृत्य विश्वविद्यालयों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों और सांस्कृतिक विमर्श का विषय बना। इसके बाद श्रीमती यामिनी कृष्णमूर्ति जी, श्रीमती मृणालिनी साराबाई जी, श्री बिरजू महाराज जी, श्रीमती सोनल मानसिंह जी, श्री केलुचरण महापात्र जी जैसे महान कलाकारों ने दुनिया को दिखाया कि भारतीय नृत्य केवल परंपरा नहीं बल्कि उच्च कोटि की कलात्मक बौद्धिकता है। आज विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भारतीय नृत्य पर शोध हो रहे हैं। वैज्ञानिक ताल और गणित के संबंध का अध्ययन कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक रस सिद्धांत को मानव भावनाओं की गहनतम व्याख्या मान रहे हैं तथा आध्यात्मिक खोजी नृत्य को ध्यान की एक विधि के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि भारतीय नृत्य में गणित भी है, दर्शन भी है, मनोविज्ञान भी है और आध्यात्मिकता भी है। जब कथक का कलाकार 16 मात्रा के चक्र में घूमता है, जब भरतनाट्यम की रेखाएं ज्यामिति का जीवंत रूप बनती हैं, जब उड़ीसी की त्रिभंगी मानव शरीर को मूर्ति कला में बदल देती है, तब दर्शक केवल नृत्य नहीं देख रहे होते, वह समय, स्थान, शरीर और आत्मा के बीच के संबंध को देख रहे होते हैं। आनंदा देव खल विमानी भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति भी संविशन्ति। आनंद से ही सब उत्पन्न होते हैं, आनंद से ही जीते हैं और अंततः आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य उसी आनंद की यात्रा है, उसी अनंत लय का स्पर्श है, उसी दिव्य संवाद का माध्यम है जो मानव को मानव से और मानव को परमात्मा से जोड़ता है। आज जब भारतीय शास्त्रीय नृत्य वैश्विक मंच पर अपने चरण रख रहा है, तब वह केवल भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, वह संपूर्ण मानवता को यह स्मरण करा रहा है कि प्रगति और परंपरा विरोधी नहीं है, आधुनिकता और आध्यात्मिकता शत्रु नहीं है, और कला वह पुल है जिस पर चलकर संसार एक दूसरे को समझ सकता है। तो आइए इस अनंत परंपरा को प्रणाम करें, उन गुरुओं को प्रणाम करें जिन्होंने इसे जीवित रखा, उन कलाकारों को प्रणाम करें जो इसे विश्व तक ले गए, और उस दिव्य लय को प्रणाम करें जो युगों से सभी प्राणियों को नचा रही है। यतो हस्तस ततो दृष्टिर, यतो दृष्टिस ततो मनः, यतो मनस ततो भावो, यतो भावस ततो रसः। अर्थात जहाँ हाथ जाते हैं वहीं दृष्टि जाती है, जहाँ दृष्टि जाती है वहीं मन एकाग्र होता है, जहाँ मन होता है वहीं पवित्र भाव का जन्म होता है, और जहाँ भाव होता है वहीं रस यानी उस परमानंद की निष्पत्ति होती है जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध देती है। रसो वै सह, परम सत्य स्वयं रस है।
1: कोई बड़ी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। नल के शोर में पहले मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, पर बाद में एहसास हुआ तो मैंने जल्दी से नल बंद किया। तब अंदाजा हुआ कि कोई दरवाजा पीट रहा है। क्या बात है, कई घंटों में नहाना बंद करो, गुड़िया आईएस में आ गई है क्या। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाहर आ गई। देखा घर में हंगामा था। ओह, तो मैं एक आईएस बेटी की माँ बन गई हूँ। एकाएक कितनी खुशियाँ मेरी झोली में कैसे आ गई। मैंने गुड़िया को खींच कर सीने से लगा लिया, उसका माथा चूम लिया। उसके पापा लगातार

फोन लगा लगा कर अपने दोस्तों को खबर दे रहे थे। सारा घर सिमट कर एक कमरे में आ गया था। इस ढेर सारी जश्न भरी खुशी के वातावरण में मुझे उस दिन की बरसती निराश गुड़िया की आंखें याद आ रही थी। हमारे बंगले के एनेक्सी में रहने ट्रेनिंग में दिनेश आया था। निहायत शर्मीला सा सीधा साधा लड़का था वह। सब लोग उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहे थे। रसोई में जाकर मैंने 2-3 डिश बनाई। कम से कम पहली बार खाना खा रहा है तो जरा ढंग से खा ले। जब वो जाने लगा तो हम लोग बाहर बगीचे तक छोड़ने आए। अचानक मैं अंदर की तरफ वापस उन लोगों की बातें करता छोड़ मुड़ी तो देखा बरामदे में गुड़िया खड़ी थी और दिनेश को देख रही थी। बाहर की उनकी लाइट नहीं जल रही थी इसलिए उसने मुझे लौटते नहीं देखा। अचानक मुझे पास देख वह हड़बड़ा से गई। मैं भी क्षण भर को सोच में पड़ गई, क्या वास्तव में क्षण भर में कोई अपना लगने लगता है। दिनेश हमारे घर आता जाता था। इधर मैंने महसूस किया था कि गुड़िया अचानक बड़ी हो गई है। उसकी आंखों में बचपने की ठुमक कम हो गई है। अब उसकी जगह लाज के साए उतर आए थे। और जैसा कि मैं बड़ों के मुंह से सुनती आई थी कि लड़की जब सियानी हो जाए तो माँ की नींद उड़ जाती है, अचानक मुझे लगने लगा था गुड़िया अब गुड़िया नहीं रही थी, सियानी हो गई थी। अब मैं बड़ी ही बारीकी से गुड़िया का अध्ययन करने लगी थी। मेरी आंखें सदा उसका पीछा करती। एक सियानी लड़की की माँ होने का एहसास मुझे हर क्षण सताने लगा था। गुड़िया अब ढंग से सजने संवरने लगी थी। घंटों शीशे में अपने को निहारती, घंटों में नहा कर निकलती। दिनेश का हमारे घर आना जाना बढ़ गया। वह कभी किताब के बहाने, कभी कैसेट सुनने के बहाने अक्सर घर में आ जाता। उस दिन टीवी पर कोई फिल्म आने वाली थी। दिनेश, गुड़िया, नीतू सब कमरे में बैठे फिल्म आने का इंतजार कर रहे थे। मैं भी तैयार होकर कमरे में आई। दिनेश ने उठकर मुझे नमस्ते की और मेरी नज़र एकदम से उसके नए स्वेटर पर गई। अरे तुमने तो बहुत प्यारा स्वेटर पहन रखा है, मैंने कहा। फिर गुड़िया से बोली, देख गुड़िया, उस दिन मैं तेरे पापा के स्वेटर के लिए यही नमूना तो बनाने को कह रही थी। मैंने गुड़िया को देखा पर उसकी हालत देखकर मुझे लगा मैंने कोई गलत बात कह दी है। मुझे दोनों को देख बड़ी हैरानी हुई, भला मैंने इसे क्या कह दिया। तभी फिल्म शुरू हो गई। सब फिल्म देखने लगे पर मेरा मन फिल्म में नहीं लगा। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई और पलंग पर लेट गई। क्या दिनेश का स्वेटर गुड़िया ने बनाया है, पर कब? ढेर सारे प्रश्न मुझे तंग कर रहे थे। सहसा मुझे याद आया कुछ दिन पहले गुड़िया ने कहा था, मम्मी मुझे एक नए डिज़ाइन का सलवार सूट सिलवाना है, कॉलेज में लड़कियों ने सिलवाया है। मैंने हाँ भर दी तथा उसे पैसे भी दिए थे कि अपने दोस्त के साथ जाकर पसंद का कपड़ा ले ले। बाद में मैं व्यस्त हो गई और पूछना भूल गई। काफ़ी दिन हो गए सूट सिलकर नहीं आया। मेरे भी दिमाग से बात निकल गई। एक दिन डिज़ाइन की किताब में स्वेटरों को डिज़ाइन देख रही थी। एक डिज़ाइन पर मेरी नज़र ठहर गई। मुझे डिज़ाइन पसंद आ गया, सोचा इनके लिए नया स्वेटर बना दूँ। देख गुड़िया, तेरे पापा के स्वेटर के लिए डिज़ाइन कैसी रहेगी। अच्छी है मम्मी, कहते हुए गुड़िया ने वह किताब उठा ली। तो गुड़िया ने अपना सूट का कपड़ा नहीं लिया और ऊन ले आई, चुपके चुपके अपने कमरे में स्वेटर बनाती रही। बातें मेरे सामने खुलती जा रही थी, यानी चिड़िया के पंख तैयार हैं, वो अपना नया घोंसला बनाना चाहती है। मैं देखती गुड़िया रात रात भर अपने बिस्तर पर जागती रहती। एक दिन जब मैं उसके लंबे बालों में तेल डाल रही तो मैंने उससे पूछा, गुड़िया दिनेश कैसा लड़का है। पहले तो सपका गई जैसे चोरी पकड़ ली गई हो, फिर वो सहज होकर शर्मा गई। तुझे पसंद हो तो बोल, तेरे पापा से बात करूं, मम्मी कहकर उसने मेरी गोद में अपना सर छुपा लिया। एक दिन जब ये दाढ़ी बना रहे थे मैंने बाथरूम में टावल देते हुए उनसे कहा, क्या आप गुड़िया के लिए कुछ सोचना नहीं चाहिए। क्या सोचना चाहिए, यही कि वह बड़ी हो गई है, सियानी हो गई है। ठीक है, देखते हैं, सोच लेंगे। बात को टालते उन्होंने दाढ़ी बनाकर वॉश बेसिन से ब्रश जल्दी से धोया। दिनेश कैसा लड़का रहेगा, मैंने

जल्दी से उनके दरवाजा बंद करने के पहले अपनी बात कह डाली। क्या वे जैसे चौंके और शीशे में अपनी शक्ल घुमा घुमा कर निरीक्षण करते रहे, दाढ़ी सही बनी है कि नहीं, मार दिया ना छक्का। उन्होंने पलट कर मुझे हैरानी से देखा। तुम औरतें होती बड़ी तेज हो, सही में मेरा ध्यान तो कभी दिनेश की तरफ गया ही नहीं। IAS लड़का मिल जाए इससे अच्छा और क्या होगा। बाहर आकर मैं प्रसन्न थी। आखिर एक दिन मैंने नौकर को भेजकर दिनेश को दही बड़ा खाने के बहाने बुला लिया। जब वो आ गया तो दही बड़े की प्लेट उसके सामने रखकर मैंने उसे कई प्रश्न कर डाले। घर में कौन कौन है, क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, कितनी बहनों की शादी हो गई, क्या तुम्हारी शादी तय हो गई। नहीं आंटी नहीं, कहते वो शर्मा गया। भाई मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि पता है मसूरी से ही लड़कों का हाका शुरू हो जाता है। वहाँ तो सुना है लोग लड़की और गठरी दोनों लिए घूमते हैं, लड़कियों से भी चक्कर चल जाता है। हाँ आंटी एकदम सही सुना, वो हंसा। हाँ तुम्हारे अंकल कहते हैं जो लड़कियाँ अच्छी रहती हैं उनकी शादी तो साथ के लड़कों से हो जाती है। तुम्हें गुड़िया कैसी लगती है, मैंने अचानक उसके कप में केतली से चाय डालते पूछा। जी, वह जैसे चोरी करते अचानक पकड़ा गया। आंटी आपने मेरी प्रॉब्लम समाप्त कर दी, मैं कितने दिनों से लगातार यही बात सोच रहा था पर आपसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अच्छा हम अंतर्यामी जो ठहरे, मैं हंसी। दिनेश खुश खुश घर से गया, मैं सारा दिन खुश थी। बिटिया इतनी जल्दी निपट जाएगी यह तो सोचा ही नहीं था। साथ ही मिसेज वर्मा मिसेज शर्मा को देखो कितनी परेशान है। शाम को ऑफिस से लौटे तो टेलीफोन फाइल देखने के बजाय मुझे खोजने लगे घर में। मुझे तलब करते ही पूछा, भाई क्या हुआ, कुछ दाना पानी चिड़िया को फेंका। चिड़िया, मैं ठुमकी, शेर कहो, शेर को दाना फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती, वह अपना शिकार खाने खुद ही आता है। रियली, वह अचंभे में पड़ गए। चलो इस बात पर बढ़िया चाय पिलाओ। वह शाम बड़ी अच्छी गुजरी। शादी के बाद की मुझे याद नहीं कि इससे बढ़िया कोई शाम कहीं हो। मैं ढेर ढेर सपने बुनने लगी थी, गुड़िया को दुल्हन बनी देखना, दिनेश को दूल्हा बना, खूब बनने गाए जा रहे हैं, बारात आई है, समधिनों के लिए गालियां गाई जा रही हैं, सब दूल्हा दुल्हन को ही देख रहे हैं। हाय कैसी राम सीता की जोड़ी है, भावरे पड़ रही है। हाय ये क्या, मैं क्यों भावर देख रही हूँ, कहते हैं बेटी की भावर और नदी में बाढ़ पर आई भावर को नहीं देखना चाहिए। गुड़िया विदा हो रही है और मेरे गले से झूल कर रो रही है। बंगला जो ढेर ढेर पेड़ों से घिरा था, बाहर की चकचक से दूर उसकी शांति मुझे अच्छी लगती थी। मैं घर का काम निपटा कर यहीं आकर बैठ जाती थी, घंटों गुमसुम बैठी यहाँ की हलचल देखती रहती। अशोक और मौलसिरी की घनी छाया ने वहाँ ठंडक बना रखी थी। गुड़िया और दिनेश अब खूब फ्री हो गए थे या मैंने उन्हें फ्री कर रखा था। शाम जैसे जैसे होने लगती न जाने कहाँ से ढेर ढेर चिड़िया के झुंड वहाँ आने लगते और अपने लिए सुरक्षित स्थान ढूंढने लगते। मनुष्य का आतंक हर जगह है पर यहाँ चिड़ियों उसके आतंक ने मनुष्य को भी डरा रखा है, सोचते मुझे हंसी आ गई। गुड़िया और दिनेश मेरे पास आकर बैठ जाते और तब हम तीनों मिलकर भविष्य के सपने बुनते। देखो तुम्हारी पहली पोस्टिंग कहाँ होती है, मैं दिनेश से कहती। शादी पोस्टिंग के पहले ही हो जाए तो ठीक रहेगा, जब तुम वापस मसूरी को जाओगे तो दोनों साथ जा पाओगे। एक दिन जब मैं बैठे बैठे गुड़िया की शादी का प्लान बना रही थी तो गुड़िया का पापा मेरे पास आकर बैठ गए। तुमने दिनेश और गुड़िया को इतनी छूट दे रखी है, क्या ठीक है, क्यों क्या हुआ, इसमें बुरा क्या है। मान लो शादी नहीं हुई तो क्यों नहीं हो पाएगी, मैंने चिढ़ कर कहा। कोई हमारा जमाना तो है नहीं जब चाहने वालों के लोग दुश्मन हो जाते थे, खुद माँ बाप दुश्मन हो जाते थे। फिर भी अरे घर बैठे IAS लड़का मिल गया, यह क्यों नहीं सोचते। अचानक दिनेश के घर से टेलीग्राम आया कि उसकी माँ बीमार है। दिनेश के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। दिनेश को परेशान देखकर गुड़िया भी परेशान थी और सारे दिन लगी रहती। माँ बाप को दिखाने के लिए दिनेश ने गुड़िया की कई फोटो रख ली है। गुड़िया के पापा दिनेश को बार बार ताकीद करते रहे कि जाते ही माँ की खबर के फोन करना, फिर मौका लगते ही शादी की बात कर लेना।
सब दिनेश को छोड़।

0: पॉइंट और छोटा महादेव में ट्रैकिंग के जरिए रोमांच का तड़का भी लगेगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने ग्रामीण पर्यटन के लिए पांडुना के भूमा और जामसावली गांव का चयन किया है, जहां होम स्टे विकसित कर युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिले के जामसावली स्थित प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिर हनुमान लोक में इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच द्वारा सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर समीक्षा की गई, ताकि श्रद्धालु सुव्यवस्थित दर्शन कर सकें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ की पहल पर 12वीं और स्नातक में 60% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी अब महानगरों में एमसीए, बीटेक और एलएलबी जैसी उच्च शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। रोजगार के मोर्चे पर छिंदवाड़ा आईटीआई के एक प्लेसमेंट ड्राइव में 139 प्रशिक्षणार्थियों को, जिनमें 52 पुरुष और 87 महिलाओं को रोजगार के लिए चुना गया है। इसके अलावा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पांडुना के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में तनाव प्रबंधन और आत्महत्या की रोकथाम पर एक अहम कार्यशाला आयोजित की गई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: मीडियम वेव और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 10:05 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं शोभा गुरटू की गाए इस कजरी के साथ।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गुलाम अली की आवाज में अब आइए सुनते हैं मोहसिन नकवी का कलाम।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700-001-4242।
1: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
3: आकाशवाणी रीवा से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाई गजल, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने।

0: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का युवा केंद्र है। 11 बजने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होगा।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हम जहां जन्म लेते हैं, जहां बड़े होते हैं, वो स्थान हमारे लिए स्मृतियों का एक जीवंत ग्रंथ होता है, हमारे संस्कारों की पहली पाठशाला। हमारे मन का सबसे आत्मीय कोना होता है हमारा गांव, हमारा शहर। और हर गांव की एक अपनी धुन होती है, हर शहर का एक अपना राग होता है। दूरियां चाहे कितनी भी बढ़ जाएं, उस धुन को, उस राग को सुनते ही मन का मौसम सुहाना हो उठता है, मन खिल उठता है। सच तो ये है कि समय की अनेक परतें बिछी होती हैं हमारे शहर या गांव के आंगन में, जिसमें छिपी होती हैं हमारी परंपराओं की रंगत, उसके इतिहास की गुनगुनाहट। कभी किसी नदी का तट किसी जगह की पहचान बन जाता है, कभी उसका प्राकृतिक सौंदर्य उसकी विशेषता बन जाता है। कभी मंदिर, किले या बावड़ियां बीते कल की कहानी कहते हैं। कभी किसी लोक कला की चहक, किसी मेले की रौनक या किसी खास व्यंजन का स्वाद उस स्थान का सबसे सुंदर परिचय बन जाता है। तो आज इस फोन इन कार्यक्रम में हमें बताइए कि आपके शहर या गांव की वो कौन सी खास पहचान है जिस पर आपको सबसे अधिक गर्व है, या जिसकी वजह से आपको अपना शहर, अपना गांव, अपना रहने का स्थान अच्छा लगता है। तो आज बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बात आपके शहर, आपके गांव की खास पहचान के बारे में। हेलो।
3: हेलो जी, नमस्ते।
2: नमस्कार, बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
3: जी? मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछौरा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
2: प्रेम सिंह सिसोदिया जी, कैसे हैं?
3: जी मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
2: तो आज का जो
3: आपको बताऊँ, 2005 से आकाशवाणी भोपाल का नियमित श्रोता हूँ।
2: अच्छा, तो चलिए, आप तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हो गए। आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, हम बात कर रहे हैं आपके शहर, आपके गांव की। हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात है आपके रहने के स्थान में जो आपको गर्व महसूस करवाती है, या जिस बात से आपको अच्छा लगता है अपना गांव या अपना शहर। तो आपने बताया कि आप बछौड़ा के रहने वाले हैं, ये उज्जैन से कितनी दूर है?
3: जी उज्जैन से 30 किलोमीटर दूर है हमारा गांव, एकदम साफ सुथरा क्लीन शहर है गांव है हमारा।
2: अच्छा,
3: पेड़ पौधे हैं, काफी बगीचे हैं हमारे यहाँ पर, और मतलब आपको बताऊँ, एकदम शांत स्वभाव के लोग रहते हैं यहाँ पे, और पानी की उचित व्यवस्था है हमारे पास, पीने के लिए भी, इस्तेमाल के लिए भी, सिंचाई के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी हमारे यहाँ पे उपलब्ध है।
2: जी जी, आपने कहा बाग बगीचे बहुत से हैं, किस चीज के हैं?
3: जी जैसे कि आम के काफी बड़े बड़े

0: है, नालियां बन चुकी है, साथ में बिजली की व्यवस्था पूरी है, तो हमें अपने गांव पर पूरा गर्व है।
1: क्या बात है। तो आपका जो गांव है वो बहुत ही साफ है, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही। तो जाहिर सी बात है कि जो गांव के लोग हैं उनकी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ना?
0: जी बिल्कुल, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ना
1: जी।
0: तो इसमें मतलब ऐसी कोई समस्या वाली बात भी होती है तो सुलझा लेते हैं।
1: तो आपके गांव का जो बाग बगीचा है, जो सफाई है, और आपने बात की अपनेपन की, लोगों के बीच बहुत अपनापन है, अपनत्व है, तो इस वजह से आपको आपका गांव प्यारा लगता है। तो ये बना रहे,
0: कहीं जाते भी है ना
1: जी,
0: दो चार दिन में वापस अपने ऐसा लगता है कि जल्दी से घर जाए, अपने परिवार वाले से मिले और अपने गाँव में रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कहीं चले जाए, दुनिया के किसी कोने में हो हम, कितनी भी सुविधाएं हो, लेकिन अपना गांव, अपना शहर, अपना घर बहुत याद आता है ना?
0: बिल्कुल, जब घर पे आ जाते हैं, कपड़े चेंज करके बस आराम से बैठ जाते हैं, तभी सुकून मिलता है।
1: तो चलिए, आपके गांव में आपको सुकून मिलता रहे, और जिस विशेषता को आपने यहाँ आज कहा है कि ये एक साफ गांव है, ये हर तरह से सुविधाओं से भरा गांव है, और इसमें पूर्णतः जो विकास हुआ है वो भी हुआ है, रोड अच्छी है, बिजली की व्यवस्था अच्छी है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, आगे और भी व्यवस्थाएं अच्छी होती चली जाएं, ये हमारी कामना है। अपने गांव से इसी तरह का प्रेम बनाकर रखिए। बहुत अच्छा लगा प्रेम सिंह जी आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। नाम बताइए।
1: तारूलाल सुतार।
0: तारूलाल सुतार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: दारू गांव से बोल रहा हूँ, नीमच जिले के पास में गांव है अपना, जिला नीमच, मध्य प्रदेश।
0: दारू गांव, अच्छा।
1: हाँ,
0: तो भाई देखिए, आज बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आपके गांव की, आपके शहर की। हम जानना चाहते हैं कि आपके गांव में अगर कोई ऐसा प्रसिद्ध स्थान हो या जो भी विशेषता आपको लगती हो वो आप आज इस मंच पर रख सकते हैं। क्या खास है आपके गांव में?

0: हमारे गांव में देव नारायण जी का मंदिर है, नागराज का मंदिर, वो बहुत प्रसिद्ध है, दूर दूर से यात्री आते हैं वहाँ। अच्छा। शनिवार के दिन तो मेले जैसा लगता है वहाँ।
1: अच्छा, नागराज जी का मंदिर।
0: हाँ, देव नारायण जी नाम है, देव नारायण नागराज का मंदिर है।
1: अच्छा, देव नारायण नागराज।
0: शनिवार के दिन बहुत भक्तगण आते हैं वहाँ। और पास में, गांव के पास में नदी है।
1: नदी है, कौन सी नदी?
0: हाँ, गांव के पास में एक नदी है, बिल्कुल गांव से लगती हुई, बिल्कुल गांव के किनारे, गांव उसी के किनारे पे है।
1: क्या
0: तो जब वो नदी में पानी देता है ना, तो इतना मस्त लगता है कि आप देखते ही जाओ।
1: तो ये बताइए कि ये जो मंदिर है, इसमें किसकी पूजा होती है? नाग देवता की?
0: हाँ, नाग देवता की पूजा, शनिवार के दिन पूजा होती है उनकी। वो रोज तो फिर साफ सफाई नहीं करते हैं।
1: अच्छा।
0: और शनिवार खास रहता है उनका।
1: तो एक मेले सी रौनक होती है, आप बता रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा तारूलाल जी आपसे बात करके। आपने बताया कि आपके गांव में एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं, और नागराज की इसमें पूजा होती
0: है। आप भी आना कभी, आपका भी स्वागत रहेगा।
1: जरूर जरूर। तो हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि नदी किनारे बसा एक गांव जहां एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ये आपके गर्व का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया, बहुत आभार।

0: डीएस परिहार जी ग्राम लभौली से बोल रहे हैं
1: जी।
0: कैसे हैं?
1: मुझे ठीक है, हाल चाल सब ठीक है।
0: और आपका गांव लभौली कैसा है?
1: गांव एक छोटा सा गांव है, ज्यादा कोई विकसित नहीं है।
0: छोटा सा गांव है लेकिन लोगों के बीच एक आत्मीयता तो होती ही है ना, ये भी एक विशेषता होती है। तो आज हम यही बात कर रहे हैं कि आपके गांव की कोई खास बात आप बता सकते हैं, या परंपरा में कोई लोकगीत हो, कोई व्यंजन हो, कोई धार्मिक स्थल हो, कोई ऐतिहासिक स्थल हो, उसकी चर्चा आप कर सकते हैं आज के कार्यक्रम में।
1: ऐसा कुछ नहीं, इधर
0: कुछ व्यंजन तो हो ही सकता है। है ना, कोई व्यंजन तो होगा जो आप लोग आपस में बनाते खाते होंगे, परिवार में बनता होगा, खास अवसरों पर बनता होगा।
1: सब बनते रहते हैं, दाल पूड़ी बनती है और निकमच बनता है, इंदरहर बनती है।
0: दाल पूड़ी इंदरहर, वाह। आपने तो बहुत ही अच्छे दो पकवानों का नाम ले लिया। देखिए बघेलखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है इंदरहर।
1: हाँ, रसाज है, ये सब बुंदेलखंड का, बघेलखंड का जैसा बोल
0: जी,
1: रहे
0: जी जी जी
1: रेसिपी जो है बहुत वैसा है।
0: तो आपको क्या पसंद है इनमें सबसे ज्यादा?
1: मैं रिकमच में भी खाता हूँ हमेशा, एक हफ्ते में एक बार खाता हूँ।
0: क्या खाते हैं?
1: रिकमच।
0: रिकमच ये कैसे बनता है?
1: वो दाल से ही बनती है।
0: दाल से?
1: मूंग की, हाँ मूंग की दाल।
0: मूंग की दाल से रिकमच। मीठा होता है या नमकीन होता है?
1: नहीं नहीं नहीं, ये तो सब्जी होती है, इसकी मसालेदार सब्जी बनती है।
0: अच्छा। तो ये पारंपरिक व्यंजन है आपके गाँव के, है ना, जो शादी ब्याह के समय भी आप लोग बनाते होंगे?
1: शादी वगैरह में तो ये सब बनता रहता है अक्सर।
0: इंदरहर की आपने बात की है, ये भी एक बड़ा ही प्रसिद्ध वहाँ का व्यंजन है, है ना?
1: जी हाँ।
0: क्योंकि देखिए हम तो भोपाल में रहते हैं, तो जब कभी इस तरह का अवसर आता है कि बघेलखंड का कोई व्यंजन हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो हम अक्सर जो इंद्रहर है इसकी फरमाइश कर लेते हैं। तो चलिए, एक स्थान अपने व्यंजन की वजह से भी जाना जाता है और ये भी हमारी संतोष और गर्व का विषय होता है। तो परिहार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इसी तरह बने रहिए। बने रहिए आकाश
1: में। दो दिन में लगाता हूँ, अक्सर बिजी रहता है।
0: हाँ, लेकिन आज बात हो गई, बहुत अच्छा लगा और बहुत जायकेदार बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम है, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं मुरैना मध्य प्रदेश से अरबिलास सिंह तोमर बात कर रहा हूँ।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम इस कार्यक्रम में। आपने बताया कि आप मुरैना के रहने वाले हैं, खास मुरैना के रहने
1: तरसमा गाँव है मुरैना में।
0: मुरैना के पास तरसमा गांव में रहते हैं आप
1: जी।
0: तो देखिए, आज तो बात हो रही है आपके रहने के स्थान की, इसलिए हमने गांव को विशेष रूप से पूछ लिया कि आपका जो ये गांव है, इसकी ऐसी कौन सी खास विशेषता है जिस पर आपको गर्व है?
1: जी महोदया, मेरे गांव की खास विशेषता जिस पर मुझे गर्व है कि मेरे गांव में आर्मी में बहुत से लोग सर्विस कर रहे हैं, कम से कम 80% लोग, 17 लोग यहाँ शहीद हो चुके हैं। शहीद स्थली के नाम से मेरा गाँव जाना जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, 17 लोग शहीद हुए हैं।
1: सही, पूरे प्रदेश में पहला गांव इतने सर्विस में, अर्ध सैनिक बलों में, सैनिक बलों में कहीं नहीं, किसी गांव में नहीं।
0: क्या बात है। तो इस गांव की माटी को हम नमन करते हैं, इस गांव की जो माताएं हैं, जो अभिभावक हैं, उनको हम नमन करते हैं कि इतने बच्चों की शहादत के बाद भी एक वो जज्बा आपके भीतर है कि देश की सेवा करना है हमारे बच्चों को, और आप सेना में अर्ध सैनिक बलों में भेजते हैं।
1: घर में चार चार बच्चे अभी अर्ध सैनिक बलों, मेरे भी 3 बच्चे अर्ध सैनिक बलों में सर्विस कर रहे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा हमें हरविलास जी आपसे बात करके, और वास्तव में मन श्रद्धा से झुक गया है आपके गाँव के प्रति।
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया। बने रहिएगा आकाशवाणी के साथ। नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार, सुनीता मैडम जी को दिल से नमस्कार, प्रणाम, आदाब। और मैं भगवान से प्रार्थना दुआ कर रहा था कि आज हमारी सुनीता मैडम जी से बात हो जाए, तो हो ही गई। कहते हैं लागी लगन लागी लगन हो गया सगुन
0: जी,
1: और मेरा मन हो गया मगन आपसे बात करके। और हम तो आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल के गुण गाने लगे।
0: क्या बात है
1: और गाते थे और गाते रहेंगे।
0: तो एक लगन लगी थी मीरा को, दूसरी लगन लगी है आपको, ये हमें समझ में आया है तो अपना परिचय तो पूरा दे दीजिए।
1: परिचय बता दूं, कहते हैं ठंडी भी थी और गर्मी भी थी और अब आ गई बरसात। और मौसम चाहे जो भी हो, हम सुनीता मैडम जी के हमेशा साथ।
0: वाह बिल्कुल।
1: और अब पता बता दूं, हिंदुस्तानी कलाकार यूट्यूब ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना, ईडन गार्डन अशोक वाटिका बोल रहा हूँ। अभी ईडन गार्डन बता दिया, अशोक वाटिका बता दिया, तो सब कुछ आ गया समझ लो। और हिंदुस्तान के दिल से बोल रहा हूँ।
0: तो चांद मोहम्मद खान जी, आपने कल्पा बताया, सतना के पास से आप बोल रहे हैं, और आज का जो विषय है वो आपके गांव, आपके शहर से ही जुड़ा हुआ है। आप हमें बताइए कि आपके शहर, आपके गांव की क्या खासियत है, ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत अच्छी लगती है या आपको गर्व का अनुभव करवाती है आपके गाँव से जुड़ी हुई।
1: हमारे गाँव ग्राम कल्पा जिला सतना की बात की जाए, छोटा सा कस्बा है मैडम जी, और यहाँ के जो लोग बाग हैं, महिलाएं हैं और बहुत ही भक्त संगीत से ओतप्रोत हैं, जो देवी देवताओं की पूजा इबादत करती हैं और सभी लोगों को मानती हैं जी जान से। और हमारे गांव के आसपास सबसे बड़ा जो है, कहते हैं कि आम का कटोरा कल्पा, आम की यहां प्रसिद्धि है, आम और कैथा, इमली और जामुन।
0: वाह, तो कौन सा आम होता है?
1: मैं बता दूं कि यहां इतने जबरदस्त आम के बगीचे हैं, गार्डन है पूरा, दोनों तरफ से नदी नाले बह रहे हैं। इसीलिए कहा करता हूं कि लंका में अशोक वाटिका था और कल्पा में चांद मोहम्मद का कल्पा,
0: सतना में कल्पा है। तो आपने कहा कि आम के बहुत से बगीचे हैं और कैथा, और इसके अलावा क्या है?
1: इमली और जामुन।
0: तो ये तो फल फूल से भरा हुआ आपका गांव है तो कौन कौन से आम होते हैं आपके गांव में?
1: आम तो अब सुनीता मैडम जी बता दूं, यहाँ देसी आम ही होते हैं पर बहुत ही लाजवाब होते हैं, उसका टेस्ट और स्वाद जो है। यहाँ के आम हमारे ज्यादातर वहाँ कानपुर भेजे जाते हैं और वहाँ बांदा।
0: क्या बात है। तो देखिए, मौसम भी आमों का है ही और स्वाद ले रहे होंगे आप आम का, आपने बात की तो हमारा भी जो मुंह है वो मीठा हो गया
1: अगर वक्त मिला सुनीता मैडम जी तो मैं आपके लिए आम जरूर अपने कल्पा के भेजूंगा, फिर उसका टेस्ट और स्वाद बताइएगा। बहुत ही लाजवाब आम होते हैं देसी, और उसका पना खाइए, मजा आ जाता है, सेहत से भरपूर। और सेहत से भरपूर आप हैं जब कार्यक्रम में आती हैं, तो चांद तो एक ही है पर जब आप कार्यक्रम में आती तो हजारों चांद होता रहते हैं।
0: क्या बात है। तो चांद मोहम्मद खान जी, आपने अपने गांव कल्पा के विषय में बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। और जाहिर सी बात है कि आप कहीं बाहर जाते होंगे तो गांव की याद आती होगी।
1: अरे आम बस का नहीं मैडम जी, मैं बता दूं मेरे ग्राम कल्पा की एक खूबी और बता दूं, यहाँ पर सबसे मेन खूबी है मैडम जी कि ना तो ठंडी होती है अधिक, ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक बरसात, सब कुछ मीडियम होता है।
0: तो मतलब एक पूरा मौसम का संतुलन आपके गांव में बना रहता है ना, ये बहुत अच्छी बात है।
1: और मैं एक बात और बता दूं कि आसमान के तारों की गिनती शायद है और समुद्र की गहराई का अनुमान 9999 मीटर की गहराई का अनुमान मैं बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज की बात।

0: और मुझे जितना प्यारा आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल से है, उसका आंकड़ा लगाना, अनुमान लगाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है
1: जी। तो चांद मोहम्मद खान जी, आकाशवाणी से आपका जो प्रेम है उसको बनाकर रखिए। आपने आज हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। हेलो
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
1: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: वाह, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से योगेश जी बोल रहे हैं, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया है, अच्छे हैं, और बारिश होना भी अब तो शुरू हो गया है।
0: तो कैसा है आपका बेमेतरा बारिश में?
1: बहुत हो गया है, मतलब कहें तो लगातार 4 दिन से बारिश हो रहा है।
0: तो ये अच्छी बात है कि चलिए बारिश तो शुरू हुई। हम आज जो बात कर रहे हैं आपके गांव की, आपके शहर की बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी खास पहचान है जिस पर आपको गर्व है आपके गांव से जुड़ी हुई?
1: अब हमारा यहाँ गांव एक छोटा सा गांव है, लगभग 1000 की जनसंख्या है, और हमेशा से शांति प्रिय रहा है गांव। कभी किसी तरह का अनैतिक व्यवहार या उस तरह की घटनाएं नहीं हुई है आज तक।
0: तो, जी जी जी
1: अदर मतलब सभी समूह के लोग रहने के बावजूद भी गांव काफी बढ़िया है।
0: जी, और आसपास कोई ऐसा धार्मिक या ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हो, कोई नदी हो?
1: हमारा जो जिला है बेमेतरा, वो गांव से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वहाँ माता शीतला और माता भद्रकाली शक्तिपीठ विराजमान है।
0: क्या बात है, तो माता शीतला और माता भद्रकाली का मंदिर है आपके गांव के पास। तो किन किन अवसरों पर कोई खास आयोजन होता है? नवरात्रि में तो होता ही होगा।
1: नवरात्रि के अवसर पर ही होता है, मतलब वही अप्रैल में एक बार, और उधर मान के चलिए
0: अक्टूबर,
1: सितंबर अक्टूबर के आसपास।
0: जी जी जी जी, और इसके अलावा कभी मेले वगैरह भी लगते हैं आपके गांव में?
1: मेला जो होता है पास में ही लगता है, मतलब गांव से 3-4 किलोमीटर दूर है। और गांव में जो होता है वो मड़ई महतर होता है, मतलब
0: मड़ई
1: वाला।
0: जी जी जी, तो ये जो मड़ई है ये भी मेले का एक छोटा रूप है ना?
1: हाँ जी, एक छोटा रूप है।

0: है और ये ज्यादातर दीपावली के आसपास ज्यादा होता है।
1: तो इस मड़ई में कोई खास क्या रौनक होती है?
0: रौनक तो यही है कि अब साल में एक बार होता है करके लोग आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं और जो भी उसकी मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, उस हिसाब से मतलब करते हैं। जैसे दीपावली हो गया, दीपावली में जो हमारा गोवर्धन पूजा होता है उसमें हमारे जो पशु होते हैं गाय बछड़े,
1: जी,
0: तो उनका विशेष महत्व होता है।
1: हाँ,
0: जी
1: तो उस अवसर पर आप लोग एकत्रित होते हैं और पशुओं की पूजा करते हैं, पशुधन की। तो योगेश जी, आपने बताया कि आपके गांव के पास शक्तिपीठ है, देवी के दो मंदिर हैं और इसके साथ ही अपने गांव में लगने वाले मड़ई की आपने बात की, जिसकी रौनक हमारे स्टूडियो तक भी पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बने रहिए इसी तरह आकाशवाणी के साथ।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताएं।
1: अनोखे सिंह सर जी।
0: अनोखे सिंह जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बाग जिला धार, विराट नगरी है हमारी।
0: बाग जिला धार से आप बोल रहे हैं?
1: हाँ हाँ।
0: तो ये बताइए कि आपके गांव की कौन सी ऐसी खास बात है जिस पर आपको गर्व है?
1: हमारे गांव का विश्व प्रसिद्ध एक बाग गुफा है सर जी।
0: जी जी,
1: गुफा बोल।
0: जी जी जी जी जी। आपने धार जिले में स्थित बाघ की गुफाओं की चर्चा की जो कि मुख्य रूप से अपनी प्राचीन बौद्ध भित्ति चित्रकला और शैलकृत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। और बहुत पुरानी गुफाएं हैं ये, लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी की ये गुफाएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व है। तो इस वजह से आपको अपना गांव, अपना शहर अच्छा लगता है, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई।
1: और हमारी बागनी नदी पे महादेव बसे हुए, जबड़ेसर, रन्नेसर, नीलकंठेसर, भूतेसर और महाकालेसर।
0: क्या बात है,
1: बागनी नदी के तट पे सर।
0: जी जी जी जी। बागनी नदी है?
1: बागनी नदी है सर जी, नर्मदा में इसका संगम है, निसरपुर में।
0: तो चलिए अनोखे सिंह जी, आपने अपने गांव के बारे में बताया जिस पर आपको गर्व है।
1: बड़केसर है, खेड़ापति हनुमान है, ये सब प्राचीन है, ऐतिहासिक है सर जी,
0: जी, जी
1: कोई धाम है
0: जी। तो बहुत से धार्मिक स्थल हैं आपके गांव के आसपास, ये जानकर बहुत अच्छा लगा हमें
1: सर जी। किला है हमारे नगर में सर जी।
0: जी जी।
1: और हमारे यहाँ संचालन, हमारे जो सक्षम लोग है सर जी, वो अन्य लोगों को सामूहिक लेके बहुत अच्छे से चलते है। भंडारा होता है जीरो वाले हनुमान जी, खेड़ापति हनुमान जी, गंगा कोई धाम, तो सब आम जन को आमंत्रित करके बहुत अच्छी सी सुविधा व्यवस्था की जाती है।
0: बहुत अच्छी बात है कि धार्मिक आयोजनों में, भंडारे में आप सब एकत्रित होते हैं और प्रेम के साथ अपना एक समय गुजारते हैं, भक्ति और आस्था के साथ, आनंद के साथ। तो ये आनंद आपके जीवन में बना रहे, ये आस्था आपके जीवन में बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, अमर सिंह राठौर बोल रहा हूँ मैम, कटनी ग्राम डिठवारा से।
0: अमर सिंह राठौर जी, आप बोल रहे हैं बिठवारा से, कटनी के पास ही गांव है। कैसा है आपका गांव, क्या खास बात है इस गांव की?
1: मैम, मेरे गांव के पास मैम पुरातत्व विभाग का जुगिया बाबा का स्थान है मैम।
0: जुगिया बाबा?
1: जी जी जी, प्राचीन विष्णु मंदिर था वहाँ पे।
0: हुँ।
1: आज भी वहाँ पे

0: तत्कालीन की ईंटें, छोटी छोटी ईंटें लगी हुई हैं और स्थान उनका बना हुआ है और प्रतिमाएं तो चोरी चली गई हैं आज से करीब 20-25 साल पहले।
1: जी
0: जी। प्रतिमाएं थी, 5-5 फुट की 2-3 प्रतिमाएं थी, हमने देखा है उनको। और वहाँ पे मकर संक्रांति के दिन अच्छा मेला लगा करता था।
1: अच्छा।
0: तो लोग नृत्य हुआ करते थे।
1: अच्छा।
0: हम लोग यहाँ दिवारी का नृत्य होता है जो फेमस है हमारे गांव में,
1: दिवारी लोक नृत्य।
0: हाँ हाँ, जो यादव लोग करते हैं ना, ग्वाल लोग,
1: ये दिवाली के आसपास करते हैं ना।
0: जी जी जी हाँ, मकर संक्रांति के टाइम भी वो लोग वहाँ नृत्य किया करते थे।
1: अच्छा, तो दीपावली के आसपास भी करते हैं और मकर संक्रांति के अवसर पर भी करते हैं। कैसी वेशभूषा होती है उनकी?
0: मैम वो मोर पंख वगैरह लगाते हैं, लड़ियां पहनते हैं, लच्छेदार, वो बढ़िया अच्छे उनके वस्त्र चमकीले टाइप के रहते हैं।
1: जी जी जी जी,
0: पंख लगा नाचते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। ढोलक की थाप बजती है, मदार उनकी।
1: वाह वाह वाह वाह, ढोलक मादर के साथ दिवारी नृत्य, आपने तो एक बिल्कुल सुंदर सा एक दृश्य खींच दिया है। वैसे मुझे जो हल्का सा याद आता है कि यही लोग शायद दीपावली के अगले दिन आकर घरों की नजरें भी उतारते हैं ना।
0: हाँ हाँ जी जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल यही लोग करते हैं,
1: है ना। बताइए कैसी शुभ मंगल की कामना है कि दीपावली के बाद ये आते हैं यादव समुदाय के लोग और घरों में, अलग अलग घरों में जाते हैं और उन घरों की नजर उतारते हैं।
0: ये होता मैम, गाँव में तो अक्सर होता है, शहर में तो नहीं पता।
1: जी जी जी,
0: गाँव में तो हर घर में वो लोग आते हैं।
1: क्या बात है।
0: और उपहार वगैरह ले जाते हैं घर से वो लोग।
1: हाँ हाँ,
0: पूरा निश्चित रहता है।
1: जी जी, तो अमर सिंह राठौर जी, आपने बिठवारा गांव की जो विशेषता बताई हमें बहुत अच्छा लगा। और हालांकि मूर्तियां अब नहीं है वहां, लेकिन एक ऐतिहासिक स्थल ये है, है ना। और आपने मेले की बात की और देवारी नृत्य की बात की, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी बातें आपके गर्व का विषय हैं। तो ये गर्व आपके मन में बना रहे, अपने स्थान से प्रेम बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया।
0: थैंक यू।
2: सुनो।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताइए।
1: नमस्कार दीदी, प्रणाम। मैं कोदवा साजा छत्तीसगढ़ से राम स्वरूप गुप्ता बोल रहा हूं दीदी।
0: कोदवा साजा छत्तीसगढ़?
1: छत्तीसगढ़, हाँ दीदी।
0: अच्छा, तो बताइए क्या विशेषता है आपके गांव की, आपके छत्तीसगढ़?
1: छत्तीसगढ़ तो हमारा यहाँ भाषा भी प्रिय है, छत्तीसगढ़ी बोली जो बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया।
0: छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, बिल्कुल।
1: यहाँ का जो अपना चावल जो रात में डुबाते हैं ना बासी, उसी ज्यादा फेमस है छत्तीसगढ़ में। बासी बोरे बासी बोलते जिसको,
0: बासी खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल।
1: यहाँ का जो अपना सब्जी है भाजी जिसको बोलते हैं हरी हरी सब्जी, यहाँ फेमस है छत्तीसगढ़ में खाने का।
0: ये भाजियाँ आपको अच्छी लगती?

0: हैं और बासी खाने की एक परंपरा है वहां पर, है ना?
1: हाँ दीदी हाँ, और यहाँ तो त्योहारों में अलग अलग प्रकार के सब कलेवा बनाते हैं दीदी,
0: क्या क्या बनाते हैं?
1: जैसे अपना तीजा पोल आ गया जिसको खुरमी ठेठरी बोलते हैं, चावल अपना इसका गेहूं आटे बनाते हैं दीदी, इसमें अपना खुरमी, अच्छा चना बेसन का जो इसमें बेल के लंबा लंबा ठेठरी बनाते हैं, इसके इधर बहुत
0: जी
1: प्रचलन है दीदी छत्तीसगढ़
0: जी
1: में
0: जी
1: तो।
0: जी तो बहुत से पारंपरिक आपके जो पकवान हैं वो बनाए जाते हैं अलग अलग
1: हाँ
0: त्योहारों
1: दीदी हाँ,
0: में।
1: छत्तीसगढ़ में होता है
0: आपने
1: बहुत।
0: बोली भाषा की बात की, छत्तीसगढ़ी बोली की बात की है, तो हमें
1: हाँ
0: लगता है कि कुछ पंक्तियां आप छत्तीसगढ़ी में बोल दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
1: दीदी अब ठीक है चलो बोल ही रहा हूँ मैं आपसे दीदी, आपसे मैं तो बोला था हूँ छत्तीसगढ़ी भाषा में है ना। हाँ आप मन बढ़िया, आप अच्छा रहा, अच्छा से बढ़िया, भैया मन से भी रहा, बढ़िया बात करत हम तुहर मन से, मन अच्छा लगत है मतलब जुड़ के तुहर मन से, आप मन से जुड़ के अतका प्यारा प्यारा प्यारा बात सुने मिलते हमारा आकाशवाणी भोपाल में, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर गीत भी सुने मिलते हमन ला
0: बहुत बढ़िया, तो आपने भाषा बोली का एक रंग हम तक पहुंचाया, बहुत अच्छा लगा। और आपने जब बोला तो मुझे तीजन बाई जी की याद हो आई,
1: हाँ दीदी इनका
0: का
1: देहांत हुआ दीदी
0: जी
1: तीजन
0: जी
1: बाई का,
0: 5 तारीख को जिनका
1: पंडवानी
0: देहांत हुआ।
1: गायिका थी बहुत
0: हाँ,
1: बहुत
0: विश्व
1: क्या बहुत
0: प्रसिद्ध
1: पुरानी गायिका थी
0: पंडवानी
1: दीदी, हम
0: जी,
1: लोग बचपन करीब 8-9 साल के तब उनके प्रोग्राम सुनते आते, मैं
0: बिल्कुल।
1: मेरे पास में भी लाउड स्पीकर था पहले, मैं कम से कम 10-15 साल लाउड स्पीकर बजाया घर का था मेरा, पंडवानी बहुत फेमस था दीदी इनका।
0: बिल्कुल, तो पंडवानी को विश्व स्तर पर पहुंचाने वाली वो शख्सियत थी, लोक की
1: हाँ
0: एक
1: बहुत
0: बुलंद
1: विदेशों भी
0: आवाज
1: गए
0: थी
1: दीदी, वो अपना प्रेजेंट भी पाई दी, नाम भी मिला,
0: जी।
1: पदक भी मिला उनको।
0: बिल्कुल बिल्कुल, भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से वो एक ऐसी कलाकार थी जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ की जब बात हुई तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो ये लोक नाट्य विधा है पंडवानी, उस पर आपको अवश्य गर्व होगा और अपनी उन कलाकार पर गर्व होगा जो
1: हाँ
0: 5 तारीख
1: दीदी
0: को हमें छोड़कर चली गई। तो बहुत अच्छा लगा रामस्वरूप गुप्ता जी ने हमें फोन किया और छत्तीसगढ़ का रंग इस कार्यक्रम में बिखेरा। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, अपनी मिट्टी से जुड़ाव ही वो डोर है जो दूरियों के बावजूद हमारे मन को अपनी जड़ों से बांधे रखती है। शहर बदल जाते हैं, गांव बदल जाते हैं, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमारा गांव, हमारा शहर पूरी आत्मीयता के साथ हमारे भीतर धड़कता रहता है। आज आपने अपने शब्दों से अपने अपने शहरों और गांवों की जो सुंदर तस्वीर उकेरी, उसमें हमारी विविधता, हमारी संस्कृति और आत्मीयता के रंग मुस्कुराते रहे। आपके शहर, आपके गांव की ये रंगत आपके मन में हमेशा यूं ही बनी रहे, खिली रहे और आप उससे हमेशा यूं ही जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब इजाजत दें इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी की हमारे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:58 होने को है। लीजिए आप सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, साथ ही रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। भारत कल से केरल के कोची में शुरू होने वाली 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री अपने अपने ब्रिक्स अध्यक्षों के नेतृत्व में महिला नेतृत्व वाले विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि रेलवे ओणम उत्सव के दौरान भी 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए 8,815 श्रद्धालुओं का छठा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर

आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी और अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in पर परिणाम देख सकेंगे। शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात 10 बजे नॉटिंघम में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 12 बजा है और ये समय है आपकी फरमाइश का। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं एक दूजे के लिए इस फिल्म का एक गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर, अनूप जलोटा और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। लिखने वाले हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। ग्राम अम्बलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ज्योति, रियांश ठाकुर और उनके परिवार के दूसरे लोग इसी गाने को पसंद किया है। भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने।

और ये अगले गाने के लिए जो हमारे पास में फरमाइश आई है, इन्होंने बहुत ही पुराना गाना सुनना चाहा है, फिल्म आन का जो 1952 में रिलीज़ हुई थी। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, लिखने वाले हैं टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, शुभ चंद्र और बिट्टा बजाज सहित इनके परिवार के दूसरे लोग। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश है ये घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया की। और ये फरमाइश है कवर कॉलोनी बड़वा, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते हैं ये गीत, आन फिल्म का नाम है, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, शकील बदायूनी ने इस गाने को लिखा है और नौशाद का संगीत है।

अगला गाने लिया है हमने फिल्म लैला मजनू से, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है, मदन मोहन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, छत्रपति संभाजी नगर से लिखने वाले हैं राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। और इन्होंने फरमाइश की है नई सड़क, एमपी शाजापुर से लिखने वाले हैं एमएम राजावत, राज मधु राजावत, शशि रक्षित, चितरंजन कमल, उमेश सरोज, आरती रेखा और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने इस गाने को पसंद किया है। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, कुरवाई ज़िला विदिशा से लिखने वाले हैं रियासत खान, सगीर खान, जफर खान, निकलेश सक्सेना और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत।

खुद गर्ज, ये फिल्म का नाम है। आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की। इंदिवर ने इस गाने को लिखा है और राजेश रोशन का संगीत। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है महादेव घाट अम्लेश्वर से, लिखने वाले हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर।

मीडियम वेव 254.45 मीटर अर्थात 1179 किलो हर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: ना उत्तेजना,
3: ना शोर दिन रात,
2: न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: मीडियम वेव 224

104.5 मीटर अर्थात 1179 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। 12:30 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होगा।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं कार्यक्रम संग्रहालय से में। धारावाहिक हंसना है हंसना मना है, इसकी छठवीं कड़ी।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।
1: एक संस्था ने एक सेठ जी के सम्मान करने का विचार अपने मन में लिया, तो साहब 2-4-5 लोग उनके दरवाजे पहुंच गए। सेठ जी बड़े पैसे वाले थे, सम्मानी व्यक्ति थे, लेकिन उनका सम्मान आज के पहले कभी हुआ नहीं था। आज तक किसी ने उनको माला नहीं पहनाई थी। खैर, ये संस्था वाले पहुंच गए और सेठ जी से कहा, सेठ जी ऐसा है कि हमने कई बार आपसे चंदा मांगा, 50 मांगा, 100 मांगा, 200 मांगा, और आपने बड़े प्रेम से हमको दे दिया। इसके लिए आप हमारा धन्यवाद स्वीकार करें, और इस बार हम चाहते हैं कि आपका सम्मान किया जाए, है ना। तो चंदा तो खैर आप देंगे, लेकिन थोड़ा इस बार चंदा आपको थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि सम्मान में करीब करीब 150 मालाएं हम आपको पहनाएंगे, उसमें बड़ी मालाएं, छोटी मालाएं। अरे आपको तो इतनी माला पहनाई जाएगी सेठ जी कि आपका सिर्फ छोड़ा थोड़ा सा मुंह भर दिखेगा। हाँ, इतनी मालाएं। अरे सेठ जी बड़े ग्लैड, उन्होंने 150 माला का पैसा दे दिया और ऊपर से और भी बहुत सारा चंदा उंदा दे दिया। ठीक है साहब, अनाउंसमेंट हो गया, 27 तारीख को रामलीला मैदान में फलाने फलाने सेठ जी का नगर सम्मान किया जाएगा। चलो साहब, पहुंच गए सब लोग, तालियां बजी, मालाएं पहनाई गई, और ये हुआ वो हुआ, सब जो कुछ होना था। लेकिन क्या देखा गया, जो फोटोग्राफर फोटो खींच रहे थे वो सेठ जी के चेहरे को बार बार पढ़ रहे थे। तो चेहरे को पढ़ के एक फोटोग्राफर उनके पास जाता है और कहता है, क्यों सेठ जी, एक बात बताइए, आपका इतना सम्मान हो रहा है, आप तो बड़े खुश होंगे। तो सेठ जी बोलते, क्या खाक खुश होंगे हैं? अरे इन लोगों ने मुझे 150 मालाएं पहनाने का वादा करके पूरा 150 माला का पैसा लिया था मुझसे, लेकिन अभी तक, और क्या, आप तो बिल्कुल हो गई बात खत्म, सिर्फ 35 मालाएं पहनाई है। रेडियो से विज्ञापन, टेलीविजन के माध्यम से विज्ञापन क्यों दिए जाते हैं, क्यों दुकानदार देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि उनका माल ज्यादा से ज्यादा बिके, उनका नाम हो, पैसे ज्यादा मिले उनको। वैसे भी आजकल रेडियो गांव-गांव तक सुना जाता है, यहाँ से सैकड़ों हजारों मील तक लोग रेडियो को बड़े प्यार से पूरी मोहब्बत से सुनते हैं, और विज्ञापन जब गांव-गांव पहुंचेगा तो स्वाभाविक भाई सामान तो बिकेगा, दुकानदार का नाम, व्यापार का नाम, सब कुछ। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक श्रीमान जी हमारे घर पहुंचे और मुझसे कहने लगे, भाई साहब ऐसा है कि अभी मैंने रेडियो में विज्ञापन सुना, टेलीविजन पे दूरदर्शन वाले भी विज्ञापन देते हैं कि साहब ये सामान खरीदो तो वो फ्री मिलेगा, ये खरीदो तो वो फ्री मिलेगा, तो साहब ऐसा कुछ ऐसा विज्ञापन आप हमारे लिए भी बना दें तो हम भी रेडियो से दे देंगे, टेलीविजन की भी कोशिश करेंगे। तो मेरा तो साहब उस समय बड़ा दिमाग खराब था, प्रोग्राम वगैरह के चक्कर में थोड़ी व्यस्तता थी, कुछ सिर में दर्द भी था। हमने ठीक है बैठिए, बना देता हूँ विज्ञापन, लेकिन बार बार नहीं बोलना आप, एक बार में इसको फाइनल करना। अरे कहले, आप तो जो बना दोगे आप तो दे दो, मैं तो उनको पहुंचा दूंगा, अरे मेरा माल बहुत बिकेगा, आप विज्ञापन बनाइए। तो फिर मैंने विज्ञापन क्या बनाया, जरा सुनिए, मैंने विज्ञापन बनाया, खुशखबरी, खुशखबरी, 90 वर्ष के बुजुर्ग पति पत्नी को, 90 वर्ष के बुजुर्ग पति पत्नी

0: को 1 किलो बिस्कुट बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा, बशर्ते कि वे अपने माता पिता के साथ हमारी दुकान में पधारे।
1: गोपाल तिवारी बड़े शरीफ इंसान हैं।
2: अब देखिए, पता नहीं इन्होंने कहां क्या देख लिया, सीधे चले आए कुछ सुनाने।
3: वैराग्य का ये आइटम कि जिसमें एक बहुत ही अच्छा युवक है, संस्कारिक है, और वो एक संत के पास जाता है। संत पहाड़ी पर रहते हैं और बब्बा बजरंग के पुजारी बिल्कुल गृहस्थ आश्रम से दूर। बड़ा उनका ज्ञान उसने लिया और अपने जीवन को धन्य किया। एक दिन वो लड़का गुरुजी से विनम्र भाव से प्रार्थना करता है और क्या कहता है, गुरुजी वो हम आते हैं तो, हाँ हाँ बोलो वत्स, क्या बात है? नहीं, हम आते हैं तो रास्ते में एक लड़की रहती है तो वो हमको बहुत देखती है और मतलब कई प्रकार की मतलब बातें करती है और हम कहाँ तक सुने गुरुजी। वत्स कदापि नहीं, ऐसा करना ही नहीं, ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, ये तो माया जाल है, इसमें फंस जाओगे फिर कुछ नहीं कर सकते। एक काम करो, तुम रास्ता बदल दो, दूसरे रास्ते से आया करो। अब साहब वो दूसरे रास्ते से आने लगा, दूसरे रास्ते से कुछ दिन आया, फिर वही शिकायत, गुरुजी उसको इस रास्ते का भी पता हो गया है। अच्छा, तुम तीसरे रास्ते से आओ। तीसरे रास्ते से आने लगा, पूरे रास्ते जब बंद हो गए, एक दिन गुरुजी से कहा, गुरुजी अब वो नहीं मान रही और वो मतलब प्रपोज कर रही शादी के लिए। कदापि नहीं, एक बार यदि शादी के मोह जाल में फंस गए तो समझ लो जिंदगी खत्म। वैराग्य का आनंद अलग है, कोई कहां उसमें आनंद है। थोड़े दिन बाद देखा कि वो लड़का कोर्ट मैरिज करके लड़की के साथ गुरुजी के पास पहुंचा, प्रणाम किया, बहू ने भी चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने पूछा कि ये गुरुजी आपकी शिष्या कह लो, बहू कह लो, अब वो माने नहीं और आखिर हमें अब विवाह करना पड़ा। और वैसे भी गुरुजी आजकल शासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि अगर दो जातियों का मिलन हो तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें गुरुजी हमने एक कौड़ी नहीं ली है, मतलब समझ लीजिए आप उस बच्ची के घर में ये भी एक बहुत खुशी की बात है। ये तो ठीक है बेटा, लेकिन अब तुमने कर ली है तो चलो ठीक है, आनंद मनाओ, पर एक चीज अवश्य है। जी गुरुजी, अब तुम्हारा यहाँ पर आना स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा, तुम गृहस्थ के माया जाल में फंस जाओगे। नहीं गुरुजी, हम तो जैसे रोज आते थे वैसे आएंगे। मानो मेरी बात, मानो, मुझे तो दुनिया का अनुभव है ना, मानो। अब साहब वो धीरे धीरे एक दो दिन टालने लगा, फिर 15 दिन में आने लगा, हफ्ते में आने लगा, करते करते वो महीने में आने लगा। करीब कुछ महीनों के बाद वो पहुंचा तो गुरुजी ने कहा, बहुत दिनों में आना हुआ, कहो सब ठीक तो है, कुशल तो है? गुरुजी आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा, सब बढ़िया चल रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रकार से आनंद है। और तुम्हारी पत्नी कैसी है? गुरुजी वो भी आपकी कृपा से बहुत बढ़िया है। तुम्हें स्नेह करती है, प्रेम करती है? गुरुजी प्रेम? अरे प्रेम तो गुरुजी पल पल पे छलकती है, जान देती हमारे ऊपर। अच्छा, इतना स्नेह करती? अरे गुरुजी इतना स्नेह कि हम कह नहीं सकते आपसे, कहो तो जान दे दे हमारे लिए। अच्छा, एक काम करो। जी गुरुजी, उसकी परीक्षा ले लो। हाँ गुरुजी, परीक्षा ले लो, क्या करना क्या होगा? तुम 3 दिन आओ, मैं तुम्हें योग सिखाऊंगा, योग भगाए रोग, योग से रोग भी दूर होते हैं, योग से परमात्मा की भी प्राप्ति होती है, योग से ज्ञान भी बढ़ता है, योग से परीक्षा भी होती है। अवश्य गुरुजी। 3 दिन वो आया साहब, गुरुजी ने योग सिखाया और योग में ये सिखाया गुरुजी ने कि आप मरणासन्न हो जाएंगे, यानी मरे जैसे हो जाएंगे, मरेंगे नहीं और लोग समझेंगे मर गए। योग का कमाल है साहब ये, क्योंकि ऋषि मुनि हमारे जो तपस्वी होते थे वो कई कई 6-6 महीने के लिए चले जाते तपस्या में, लोग सोचते थे समाधि ले ली लेकिन फिर भी जिंदा, ये बात। तो गुरुजी ने उसको सिखाया। अब कहा, गुरुजी आदेश क्या है? गुरुजी ने कहा, एक काम करो, तुम घर जाओ, पत्नी से कहना क्या बनाया, जो खाना बनाया है वो नहीं खाना, दूसरा कुछ बनवाना, और तब तक जब तक वो बनाए तुम लेट जाना, हम आएंगे और फिर रामलीला चालू। ठीक है गुरुजी। अब साहब वो घर गया और पूछा, हाँ क्या बना आज?
4: आज मतलब हमने सोचा कि दलिया बनाए।
3: अरे तुम यार दरिया बनाया तुमने। दरिया रिया नहीं था, मतलब एक काम करो, कोई अच्छी चीज बनाओ। सतुआ घोर?
4: अरे सतुआ नहीं घोर यार तुम,
3: सतुआ दरिया तुम, तो आप बताओ क्या परमल की सब्जी? अरे वो तो मरीजों को खिलाते परमल की सब्जी।
4: आप ही बताओ क्या बना।
3: अरे यार तुम एक काम करो, तुम और कुछ बढ़िया सा आइटम बनाओ ना तुम।
4: एक काम करो, आप साबूदाने खिचड़ी।
3: अरे यार तुम एक काम करो, सुनो मेरी बात।
4: हाँ आप कहो तो, आप तो कहो तो, क्या खाएंगे हम? वो ही बना दे, 56 भोग बना दे, कहो तो आप।

छप्पन अपन भोग रहने दो, तुम पूड़ी और खीर बनाओ और आज हम खीर पूड़ी खाएं। दूध तो है, तुम बाजार से मंगवा लो दूध, मेवा वेवा मंगवा लो, बढ़िया खीर बनाओ शानदार, आज हमारा बहुत दिल खुश है। अगर आज तुमने खुश कर दिया तो समझ लो तुम जिंदगी भर खुश। क्या चीज बात कर रहे हैं आप, अब भी बनाते हैं खीर। फौरन दूध दूध उसने अरेंज किया और खीर बनाई, पूड़ी बनाई, खीर बन रही थी, पूड़ी बन रही थी। यहाँ पर ये गांव में मकान था इनका, पर्ची थी, पर्ची में खंभा लगा था और खंभे में पैर फंसा के ये समाधिस्ट हो गए, समाधि में लीन हो गए। वहाँ खीर बनाने में इनकी पत्नी लगी और जैसे ही खीर बनी उसने आवाज लगाई, अरे क्यों भाई चलो आओ खीर बन गई। कोई आवाज नहीं, अरे हमने कहा खीर बन गई, आइए प्लीज जल्दी आइए खीर बन गई। कोई आवाज नहीं, तीन चार आवाजें दी, जब कोई आवाज नहीं, उसने कहा कहीं निकल तो नहीं गए टहलने, आए देखें। देखा उसने तो ये अपने मरणासन पड़े, उसको उठाया, अरे उठिए उठिए, काय को उठे, वो तो समाधिस्ट थे। तब उनकी नब्ज देखी और देखा कि ये तो नहीं रहे, अब क्या करें। उसने विचार किया, महिलाएं बड़ी चतुर होती, उसने विचार किया कि देखो ऐसा है, अगर अभी हम रोते तो सारे गांव मोहल्ले के लोग आ जाएंगे और जो बनी बनाई खीर है पंडित तो उसका दुरुपयोग करेंगे तो इसके पहले कि पंडित इस खीर का दुरुपयोग करें, अपन इसका सदुपयोग कर क्यों ना कर लें। फौरन वो गई, पंखे में खीर ठंडी करी और बिल्कुल सपाटे से उसने पूरी खीर पोंच के खाई और गंजिया मांझ के धर दी उसने बिल्कुल, और फिर वहां पर आई और आने के बाद उसने पूरी रामलीला शुरू। मेरे को छोड़ गए, कहां चले गए, मैं इनको कितना प्यार करती थी, कहां चले गए मेरे स्वामी, कहां चले गए। अब ये आवाज साहब सुनी तो सासू माँ ने सुनी और वो चली आई, कहा होगा बेटा, कहा के लाने रो रही, कहा होगा ये नहीं रहे, भगवान के पास चले गए। माँ ने देखा बेटा जो है उसकी नब्ज नहीं चल रही, अरे बेटा कहाँ चले गए, अरे राम कहाँ चले गए, पचपन की हम हो गए, भगवान हमें उठा ले तो इन्हें कहाँ उठा, अरे राम। इतने में दद्दा ने सुना, दद्दा भी आए, अरे कहाँ हो गो, अरे लड़का नहीं रहो। दद्दा भी बोले, अरे 68 के हम हो गए, रिटायरमेंट हो गए, पेंशन ही तो खा रहे, अरे राम परमात्मा हमें उठा ले तो एक लड़का काय को उठा लो, अरे भगवान। गली मोहल्ले के लोग, आस पड़ोस के लोग सब इकट्ठे हो गए और तभी गुरु जी पीछे से आए। जैसे गुरु जी आए रोना पिटना मचा हुआ, गुरु जी को देख कर लोगों की ढढ़ास बंधी, शांत हुए गुरु जी से। गुरु जी ने आकर वहां पूछा कि ये लोग क्यों रो रहे हैं। सभी ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई। गुरु जी ने कहा कि अवश्य कुछ अच्छा होगा, मैं आ गया हूं। तो सबने कहा गुरु जी ऐसा कुछ करो कि जी हम आज जिंदा हो जाए। अब तीनों लोग ने कहा, बहू ने क्या कहा, सास जी ने क्या कहा और बब्बा जी ने क्या कहा, अलग अलग लोगों के अलग अलग बातें। सुनिए साहब, बहू ने पहले क्या कहा, गुरु जी कैसे करो, हाँ कुछ भी करो गुरु जी, हमारे प्राण ले लो, लेकिन इनको जिंदा कर दो गुरु जी, मेरे को बहुत चाहती थी मेरे प्राण ले लो गुरु जी, लेकिन इनको जिंदा कर दो। अवश्य अवश्य मैं यत्न करूंगा। दादी अम्मा ने कहा, मतलब बहू की सास ने, अरे गुरु जी, अरे राम हमारे तो दिन कहे भाई, लड़का जलो गो जीवे को का फायदा गुरु जी, अरे राम, अरे अरे गुरु जी, गुरु जी हमारे ले लो, अरे राम परमात्मा लगे तो हमारे प्राण ले लो, लेकिन लड़का को अरे लड़का को जिंदा कर दो गुरु जी, अरे अम्मा की आत्मा तो मका मालूम, अरे राम, अरे गुरु जी हमें लगे तो ले लो लड़का, जिंदा कर दो गुरु जी। बब्बा ने बोला, अरे गुरु जी दुकरिया को रहन दो, बहू को भी रहन दो, तुम तो हमारे प्राण ले लो, 68 के हो गए, अब तो चला चली की बेरा है, वैसे भी हमारा दो तीन दोस्त चले गए, हमारा नाम बेटिंग में, हमें ले लो गुरु जी, अरे राम, अरे। ये चर्चा चल रही थी। गुरु जी ने कहा आप लोग ना रोएं, अवश्य बच्चे की जान आ जाएगी, जीवित हो जाएगा, एक काम करें पवित्र गंगा जल आप बुलवाएं, मैं भी कुछ प्रयोग करता हूं। गंगा जल साहब बुलवाया गया, मंगवाया गया गंगा जल, गंगा जल रखा, गुरु जी ने गंगा जल अपने कमंडल में लिया और कुछ मंत्रोच्चारण किया, और मंत्रोच्चारण करने के पश्चात में उन्होंने उस जल को पीने के लिए पीने योग्य बनाया। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना

0: गंगे, इस बच्चे का कल्याण करो, अवतरित हो मां, आश्रय दो मां, प्राण दो मां। अब साहब उन्होंने ये पढ़ा और पढ़ने के तत्पश्चात लोगों को बड़ी आशा जागी कि अब शायद बच्चा जीवित हो जाएगा। अब गुरु जी ने कहा, देखिए ऐसा है, ये पवित्र गंगा जल जो मंत्रोच्चारित हो चुका है, इसे जो पिएगा उसके प्राण निकल जाएंगे, ये बच्चा जीवित हो जाएगा। तो गुरु जी ने कहा सबसे पहले कि देखिए ऐसा है, सबसे ज्यादा जो प्रेम करता है वो इसको पहले पिए। तो बेटा बहू, तुम तो जान से ज्यादा चाहती थी, तुम पी लो। तो बहू ने कहा, नहीं, वो कैसे पी ले, पहले तो सबसे पहले पप्पा जी का नाम मारे। हमारा नाम तो वेटिंग में है। बब्बा जी से कहा कि आप पी लो। बब्बा जी कहा, अरे बेटा हम तो जरूर पी लेते, हमें तो जाने हैं आज नहीं कल, लेकिन अगर हमने पी लो तो जेड कर गया को कान देखे। अरे वो तो बाहर कर दे, रोटी पानी कौन दे है। अरे राम, हम नहीं पी रहे बेटा, गुरु जी हम नहीं पी रहे, हमें माफ करे परमेश्वरी, हम नहीं पी रहे गुरु जी। गुरु जी ने कहा कि सेकंड अपॉर्चुनिटी दादी जी को दे। दादी से कहा कि आप पी लो। माता जी आप ग्रहण करें जल, अभी आप कह रहे थे कि हमारी जान ईश्वर ले ले लेकिन बच्चा जीवित हो जाए। अरे अरे राम, अरे अरे हम तो पी लेते गुरु जी, लेकिन का बताए, अगर जैसे हमने जल पी लो फिर डोकड़ा को का हुए है। नहीं तो आपके इनके लिए, बब्बा जी के लिए तो बहू है। अरे बहुओं की तो का बात है गुरु जी, हम चल बसे तो वे न्यारी हो जाए, डुकरा को कौन देखे। हम नहीं पी रहे गुरु जी, हमें नहीं पीने। गुरु जी ने तीसरा ऑप्शन उसकी पत्नी से कहा कि अब दोनों जन नहीं पी रहे इसलिए आप पी लीजिए। तो उसने क्या कहा, गुरु जी मैं नहीं पी सकती। क्यों, अभी तो तुम कह रही थी कि मैं प्राण दे सकती हूँ, पी सकती हूँ, सब कर सकती हूँ उनके लिए। गुरु जी मैं जरूर पी लेती, लेकिन मेरी और मेरी सहेली की एक शर्त लगी थी कि देखो जो भी ये जो जाता है लड़का ना, जो कि ब्रह्मचारी है, उससे जो भी मतलब अपने तरफ मामला पूरा सेट हो जाएगा ना, मैं वो जीत जाऊंगी। तो हमने 10,000 की शर्त दी थी, गुरु जी। लेकिन ना मेरी तो शादी हो गई, अगर मैंने गुरु जी पी लिया ना तो मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन गुरु जी इनको इनकी हमारे जैसी कई हीरोइन मिल जाएंगी। और वैसे भी गुरु जी मैं भी इतनी खराब नहीं दिखती हूँ, मेरी उम्र ही क्या हुई है, अगर मान लीजिए ये मर गए तो मरे रहने दीजिए, मुझे इनके जैसे कई हीरो मिल जाएंगे। इतनी बात गुरु जी ने सुनी तो फौरन पीछे से आवाज आई,
1: हाँ गुरु जी।
0: हाँ पुत्र बोलो।
1: तो भाई काले पियो।
0: गुरु जी ने कहा, हाँ पुत्र मैं अवश्य पी लूंगा, लेकिन यहां नहीं, मैं भी थोड़ी देर से पीऊंगा। गुरु जी ने गटगटा के पानी पिया।
1: कहा गुरु जी जिंदा नहीं हो रहा भैया, अब तुम तो जाओ बा। गुरु जी और कितनी देर जियो यार, जल्दी करो।
0: अब साहब गुरु जी ने कहा, नहीं इसका विधान है, इसको ले जाना पड़ेगा और स्मशान भूमि में एक और संस्कार करेंगे, तब मेरे प्राण निकलेंगे इसके आएंगे। ये जो खंबे में लात इसकी फंसी है, टांग फंसी है, इसको निकालिए ले चले। अब वो साहब टांग इतनी जकड़ गई थी कि खंबे से निकल नहीं रही थी। तो दो ऑप्शन थे, पहला कि खंबा काट दूं और नहीं तो दूसरा। तो साहब जब उनने कहा कि दूसरा ऑप्शन, तो उसने पत्नी से कहा उसकी, तो कि अब क्या करें, खंबा काट दें कि। तो उसने कहा, गुरु जी अभी 3,500 रुपए दे के छपवाया है, अगर आपने खंबा काटा तो ये छत घर घर आ जाएगी, पूरी गिर जाएगी मचान। आप एक काम करो, अब तो जी चले ही गए हैं, अब आप तो
2: फौरन साहब उठे और दो तीन अपने हाथ दिए और खूब लट्ठ और खूब पिटाई।
1: क्या लगा है, तुम तो बोल रहे थे बहुत चाहते जी जाती,
2: नहीं तो ऐसे क्या, अच्छा तुम्हारी तो बहुत उनने

0: हंसना मना है,
1: हंसना मना है,
0: अरे हंसना मना है,
1: हंसना मना है।
0: कोशिश कोई लाख करे कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
1: हंसना मना है।
2: भाई वाह, लतीफे सुनाने में मकरंद बड़नेरकर का जवाब नहीं, यकीन नहीं आता ना, तो चले सुने इनको।
3: एक बार क्या हुआ, एक चौराहे में एक आदमी खड़ा हो गया, दूसरे आदमी को पीट रहा था। बहुत देर हो गई, घंटा भर हो गया पीटते पीटते, कुछ लोगों से रहा नहीं गया, तो उन्होंने बोला भाई क्या बात है यार, क्यों मार रहे हो इसे, जब से देख रहा हूँ पीटे जा रहे हो पीटे जा रहे हो। अरे समझ में नहीं आता यार, क्या आदमी है यार, इसने मेरे को 2 साल पहले गेंडा कहा था, 2 साल पहले गेंडा कहा था, और आज आप इसे पीट रहे हो। क्या बताऊं यार, आज ही चिड़ियाघर में जाके गेंडा देख के आया हूं। ऐसी एक बड़ी प्यारी सी बात, एक पहलवान विज्ञापन के दफ्तर में पहुंचा और जाके सीधे मुख्य संवाददाता को उसने मारना चालू किया। लोग परेशान हो गए, बोले क्या बात हो गई, क्यों भाई क्या बात है पहलवान जी, क्यों मार रहे हो। अरे इस आदमी ने मेरा सारा कचरा कर दिया, मेरी अच्छी खासी अगरबत्ती की फैक्ट्री थी, मैं यहाँ विज्ञापन देने आया पेपर में, इसने पूरा विज्ञापन उलट दिया। बोले क्यों क्या हो गया, क्या हो गया, आप क्या पूछ रहे हैं। देखिए मैंने विज्ञापन दिया था पहलवान छाप अगरबत्ती, और उसने पेपर में छाप दिया अगरबत्ती छाप पहलवान। एक छोटा सा बच्चा अपने घर के सामने साइकिल चला रहा था, शायद पहली बार साइकिल चला रहा था। चलाते चलाते अचानक क्या किया, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उसने एक हाथ छोड़ दिया, और हाथ छोड़ के अपने दोस्त को बोलता है, अरे चिंटू चिंटू देख देख मेरा हाथ गायब, देख देख मेरा हाथ गायब। थोड़े देर बाद उसने क्या किया, दूसरा हाथ भी छोड़ा और बोलता है, अरे चिंटू देख देख मेरे दोनों हाथ गायब, मेरे दोनों हाथ गायब। उसने फिर क्या किया, पैर भी छोड़ दिया, फिर बोलता है, अरे चिंटू देख देख मेरे दोनों पैर भी गायब, मेरे दोनों पैर भी गायब। धड़ाम से जाके आगे गिरा, खिसिया के बोला, मेरे ना दोनों दांत भी गायब, मेरे दांत भी गायब।
0: हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है बैजनाथ, उनके घर एक दिन में पहुंचा। बैजनाथ ने बोला, आओ रजनीकांत जी आओ बैठो बैठो। तो साहब हम बैठे, चाय आई कॉफी आई, बड़ा आनंद आ रहा था, यहाँ वहां की चर्चाएं हुई। अचानक हमारे मित्र बैजनाथ का लड़का, बड़ा प्यारा सा बच्चा, अपने पिता के पास यानी हमारे मित्र बैजनाथ के पास जाके बोलता है, पप्पा पप्पा हम बाहर जाएं पप्पा। तो उनके पिताजी ने बोला, क्यों भाई क्यों बाहर जाएं। पप्पा पप्पा वहां बाहर बंदर आया, हमको उसको देखना है। तो बैजनाथ बोलते हैं, बेटा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अभी अंकल जी घर में आए हैं, वो बैठे हैं, और तू बंदर देखने बाहर जा रहा है। मैं चला जा रहा था, अचानक रास्ते में क्या देखता हूँ, 4-5 बच्चे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से एक जगह पर इकट्ठा हैं। मैं पहुंचा, मैंने देखा, हमने क्यों बेटा क्या हो रहा है। 10 का नोट पड़ा हुआ था जमीन में, चारों पांचों बच्चे बोल रहे थे आपस में कि जो सबसे अच्छा वाला बढ़िया वाला झूठ बोलेगा ना, ये 10 का नोट अंकल जी उसको मिल जाएगा, इसलिए हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे खड़े हैं। तो मेरे को लगा, हमने कहा देखो जरा जरा से छोटे छोटे बच्चे ये आपस में ये विचार कर रहे हैं कि जो सबसे अच्छा झूठ बोलेगा उसको 10 रुपए का नोट दिया जाएगा, उसको मिल जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने बच्चों को समझाया, देखो बेटा झूठ बोलना बहुत खराब बात है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो कभी झूठ नहीं बोलता था। तो एक लड़का बोलता है, अंकल जी जीत गए, अंकल जी जीत गए, 10 रुपए अंकल जी को मिल गए। एक न्यूरो सर्जन डॉक्टर थे, दिमाग के डॉक्टर, उनके पास सुबह सुबह एक मरीज पहुंचा था, उसको कुछ परेशानी थी, क्या परेशानी वो हम सुनते हैं। ये मरीज आया,

0: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, आजकल वो मतलब मतलब कहने का डॉक्टर साहब
1: क्या मतलब कहने का, अच्छे से बताइए क्या मतलब, मतलब मतलब क्या है, क्या हो गया आपको?
0: डॉक्टर साहब मेरा मतलब कि मतलब ऐसा कि मतलब डॉक्टर साहब
1: ओहो हमारे समझ में नहीं आ रहा मतलब, मतलब क्या मतलब, मतलब इस तरीके से बताइए आपको क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है आपको?
0: डॉक्टर साहब बात यह है कि आजकल मेरी याददाश्त कुछ कमजोर हो चली है, मैं जो भी कहा किया करता हूँ वो सब बिल्कुल तुरंत ही भूल जाया करता हूँ, बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब।
1: ओहो यानी याददाश्त कमजोर हो गई है?
0: हाँ डॉक्टर साहब,
1: जो कहते हैं करते हैं भूल जाते हैं,
0: भूल जाते डॉक्टर साहब बिल्कुल भूल जाते हैं, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब।
1: हाँ हाँ हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक बात बताइए
0: जी जी,
1: ये बीमारी आपको कब से है
0: डॉक्टर साहब? कौन सी बीमारी?
1: एक पागल खाने की कहानी सुना रहा हूँ। एक नए डॉक्टर पूरे पागल खाने का मुआयना कर रहे थे, पुराने डॉक्टर साहब उनको सब समझा रहे थे कि कौन पागल कैसा है, किसकी तबीयत कैसी है, कौन क्या है वगैरह वगैरह। ये नए डॉक्टर हैं और ये पुराने डॉक्टर, सुनते हैं आगे क्या है।
0: डॉक्टर शर्मा ये पागल गंगाराम है, ये एक लड़की से प्यार करता था।
1: ओहो
0: बेचारा।
1: ओहो
0: शादी करना चाहता था।
1: कौन कौन कौन शादी करना चाहता था?
0: ये गंगाराम नाम का पागल,
1: ये जो पागल है इसका नाम क्या बताया आपने?
0: गंगाराम।
1: अच्छा ये क्या करना चाहता था?
0: ये डॉक्टर साहब एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
0: मगर लड़की ने धोखा दे दिया और अच्छा। पागल हो गया।
1: ओहो यानी गंगाराम जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसने उसको धोखा दे दिया और इसको कुछ ऐसा चोट पहुंची दिमाग में तो ये पागल हो गया।
0: ये पागल हो गया।
1: अच्छा चलो आगे चलते हैं।
0: बेचारा
1: ये सामने जो ये जो खड़ा हुआ ये कौन है?
0: वो वाला?
1: हाँ
0: डॉक्टर साहब वो तो पागल लटोरे लाल है।
1: अच्छा इसका नाम क्या रखा आपने? नहीं इसका नाम क्या है? लटोरे लाल।
0: ये लटोरे लाल।
1: अच्छा अच्छा इनको क्या तकलीफ है, कैसे पागल हो गई है?
0: इसने उसी लड़की से शादी की है जिस लड़की से गंगाराम प्यार करता था। एक फिल्म की शूटिंग की तरफ लिए चल रहा हूँ। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जो हीरो के डायलॉग रहते हैं तो हीरो समय पर स्टूडियो नहीं आता है जिसके कारण डायरेक्टर साहब को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और अचानक एक ऐसे आदमी को पकड़ लिया जाता है जो जल्दबाजी में जिसको पकड़ कर लाया जाता है वो आदमी अपना ताबीज बेचकर पेट पालने वाला एक मदारी और जमुरी का खेल दिखाने वाला शख्स होता है। उससे वो डायलॉग बता दिया जाता है। वो डायलॉग कुछ इस तरह था कि लैला लैला तेरी लंबी लंबी जुल्फों में हो जाने को जी चाहता है, लैला तेरे मोती जैसे दांत इनके सामने सूरज भी मान पड़ जाता है, लैला तेरी लंबी लंबी जुल्फों में हो जाने को जी चाहता है, डूब जाने को जी चाहता है। लेकिन जैसे ही मदारी को उस डायलॉग को बोलने के लिए शॉट पर लाया जाता है मदारी पहले जैसा डायरेक्टर साहब ने बताया वैसा डायलॉग बोलने का प्रयास करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से में हंसना मना हंस धारावाहिक की छठवीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। भारत कल से केरल के कोच्चि में शुरू होने वाली दो दिवसीय ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री अपने अपने ब्रिक्स अध्यक्षों के नेतृत्व में महिला नेतृत्व वाले विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि रेलवे ओणम उत्सव के दौरान भी 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए 8,815 श्रद्धालुओं का छठा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी एवं अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in/results.aspx पर परिणाम देख सकेंगे। शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात 10 बजे नॉटिंगहम में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस

नमस्कार साथियों, कार्यक्रम महिला सभा में स्वागत है आपका। आपके साथ हूँ मैं दुर्गेश नंदिनी। कैसी हैं आप? बारिश की बूंदों ने कर दिया ना मन तरोताजा। जरूरी भी है सखियों, मन अच्छा होगा तो तन भी स्वस्थ होगा। और इन दोनों के साथ ही सखियों, खुद पर भरोसा और अपने दम पर आगे बढ़ने की चाह का होना भी जरूरी है। ये वो गुण है सखियों, जिन पर सफलता की नींव रखी जाती है। गौर फरमाइएगा, खुद पर हो भरोसा तो हर राह आसान हो जाती है। खुद पर हो भरोसा तो हर राह आसान हो जाती है। आत्मनिर्भरता की धूप में हर मुश्किल पिघल जाती है। सखियों, आत्मनिर्भरता का भाव जीवन में सबसे बड़ा संबल है। जी हाँ, आत्मनिर्भर नारी सशक्त समाज का अभिप्राय है महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र होना। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं, तो वे केवल अपने परिवार को ही नहीं सखियों, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के समग्र विकास की मुख्य धुरी बनती हैं। क्या सोच रही है? यही ना कि जीवन में आत्मनिर्भर होना यानी सशक्त होना बहुत जरूरी है। सही सोच रही है। और चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योजना की। जी हाँ, हमारी मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना का यदि आप लाभ लेना चाहती हैं, तो ध्यान से सुनिए हमारी बातों को। जी हाँ सखियों, असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों की गर्भवती महिलाओं और श्रमिक पत्नियों के लिए संचालित एक कल्याणकारी योजना है। इसके तहत सुरक्षित मातृत्व, बेहतर पोषण और स्वास्थ्य के लिए कुल 16,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सखियों, इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य, टीकाकरण और उचित पोषण को बढ़ावा देना है। वित्तीय सहायता की बात करें तो सखियों, पहली और दूसरी संतान के समय 16,000 रुपए की राशि 2 किश्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। सामान्य प्रसूति के समय 4,000 रुपए और संस्थागत प्रसव के बाद 12,000 रुपए। पात्रता मानदंड की बात करें तो सखियों, महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होना चाहिए। महिला या उसके पति का असंगठित कर्मकार मंडल या भवन और अन्य स्वनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिक होना अनिवार्य है। सखियों, महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज में श्रमिक पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक जो आधार से लिंक हो, गर्भावस्था का मेडिकल प्रमाण पत्र, डॉक्टर की पर्ची और जन्म के बाद शिशु का जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है। इसके साथ ही सखियों, आवेदन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो आप अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर या ई उपार्जन एमपी लेबर डिपार्टमेंट के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से कर सकती हैं। और अब सुन लेते हैं प्यारा प्यारा भीगा भीगा सा एक गीत।

0: समझा
1: समझा आ ठंडी हवा
0: आ हा समझा
2: गीत हमने सुनिए सखियों, अब भरते हैं हौसलों की उड़ान।
3: उड़ान खुशियों की, उड़ान सपनों की, उड़ान हौसलों की, मेरी उड़ान।
4: सखियों, आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, परिवार नियोजन और सरकारी योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुँचाती है, विशेष रूप से स्वयंसेवी के रूप में कार्य करती है। जी हाँ, एक ऐसे ही जिम्मेदार कर्तव्यनिष्ठ आशा कार्यकर्ता इंदु बाला चौहान हमारे साथ हैं श्रृंखला मेरी उड़ान में। आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार इंदु जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
5: जी धन्यवाद, नमस्कार।
4: इंदु जी, सर्वप्रथम तो आप अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताएं, कितने घरों को आप कवर करती हैं?
5: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं की मुख्य कड़ी है। आशा कार्यकर्ता की मुख्य जिम्मेदारियां हैं समुदाय को स्वास्थ्य, स्वच्छता, टीकाकरण और परिवार नियोजन के बारे में जागरूक करना, गर्भवती महिलाओं का पंजीयन व संस्थागत प्रसव कराना, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करना और टीकाकरण में भाग लेना, और समुदाय में ORS के पैकेट वगैरह बांटना, आयरन की गोलियां देना, कंडोम बांटना, ये सब जो है आशा कार्यकर्ताओं की मुख्य जिम्मेदारियां हैं।
4: बहुत ही अच्छी आपने हमें जानकारी दी इंदु जी, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण में आप कैसे मदद करती हैं?
5: हम आशा कार्यकर्ताएं गर्भवती और बच्चों के टीकाकरण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। हम लोग घर घर जाकर सर्वेक्षण करती हैं और गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनका पंजीयन करवाती हैं, और जो बच्चे हैं जिनको रूटीन टीकाकरण लगना है, जैसे जन्म से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों को जो टीकाकरण होते हैं, तो इन लोगों का जो है टीकाकरण केंद्र तक लेके जाते हैं हम लोग अपने समुदाय में से, ताकि बच्चों को जो है जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके। और गर्भवती महिलाओं को भी टिटनेस का टीका लगना, उनका पंजीयन ऑनलाइन आजकल एंट्री हो गई है मैडम, तो वो सब कुछ हम लोग का जो है जिम्मेदारियां हैं सब।
4: इंदु जी, हमारी बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, और अब बात करते हैं समस्याओं की। फील्ड में काम करते समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप बताएं प्लीज।
5: जी हाँ, वैसे तो जो भी काम करते हैं तो शुरुआत में बहुत सारी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। वैसे ही हम आशा कार्यकर्ताओं को भी बहुत सारी समस्याएं बनी रहती है। जैसे सरकार अगर कोई स्वास्थ्य योजना चलाती है तो लोगों को इसके बारे में समझाना, तो ज्यादा लोग शिक्षित नहीं रहते हैं तो वो उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, तो वो हमको मतलब लोगों को समझाना पड़ता है क्या लाभ है इन सब चीजों के और ये योजना क्यों चला रही है सरकार, तो आपको क्या लाभ मिलेगा। इसके अलावा हम आशा कार्यकर्ता हैं, बहुत सारी ऐसी है जिनको पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जैसे मैं हूँ तो मुझे तो परिवार की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिला है, मेरे हस्बैंड जो है मुझे

0: बहुत सपोर्ट करते हैं मेरी ड्यूटी के लिए, लेकिन बहुत सारी आशा बहनें हमारी जिनको परिवार में जो है आशा कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये सब समस्याएं जो है बनी रहती हम लोगों के, लेकिन फिर भी हम लोग को मेन उद्देश्य हमारा क्या है, समाज सेवा है आशा कार्यकर्ता के रूप में, तो हमें बस खुशी मिलती है।
1: क्या बात है इंदु जी, आपने बहुत ही सहज तरीके से अपने मन की बात रखी और वास्तव में ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप समाज सेवा कर रही हैं। यदि हमारी कोई सखी जो आशा कार्यकर्ता बनना चाहती हैं तो उसके लिए उनको किन औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा?
0: वैसे आशा कार्यकर्ता जब मैं बनी थी तो 12th पास से ही मैंने जो है फॉर्म भरा था, अपने जोन है स्वास्थ्य विभाग का जोन, जैसे अपने इंदौर जिला में 4 मुख्य जोन है, तो जो वार्ड वाइज जो जोन है अपना नंदा नगर जोन लगता हम लोग का, तो वहां जाकर मैंने फॉर्म भरा था और फिर मेरा लगभग 6 महीने बाद में ज्वाइनिंग लेटर घर पे आ गया था। आपने जैसे अभी पूछा कि अगर कोई बहन अगर हमारी आशा कार्यकर्ता बनना चाहती है तो उसके लिए जो है मैंने तो 12th पास से ही मैंने फॉर्म भरा था और मेरी ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन अब जो है उसमें ग्रेजुएट होना जरूरी है हमारी कोई सी भी बहन अगर आशा कार्यकर्ता बनना चाहे तो, और उसका मृदुभाषी होना बहुत जरूरी है, अगर फील्ड में जाएंगे अपनी बात रखना आना चाहिए, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि हर कोई बात नहीं समझ पाता है, तो उसके लिए अपना व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए कि सरकारी योजनाओं को हम जो है सही तरीके से लोगों को बता सकें और लोग उसका लाभ उठा सकें, अपनी बात को उनके मन तक पहुंचा सकें, लोगों को जो है जागरूक कर सकें, ये जज्बा होना चाहिए तो वो जो है आशा कार्यकर्ता की ड्यूटी कर सकती है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता जरूरी नहीं है कि पेमेंट आया तो ही या पेमेंट के लिए ही नौकरी करना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है हम लोग के इसमें, तो बस एक सेवा भाव होना बहुत जरूरी है, सबसे मेन पॉइंट है, और अगर अगर किसी की मदद हो रही है हम आशा कार्यकर्ताओं की वजह से तो दिल में बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मैंने ही अनुभव किया हकीकत में बहुत बार बहुत खुशी मिलती है हकीकत में।
1: क्या बात है, तो आपके चेहरे से हम देख रहे हैं खुशी झलक।
0: हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद।
1: इंदु जी ये बताइए कि सही समय पर सहयोग प्रोत्साहन राशि आपको मिलती है, आप संतुष्ट हैं?
0: हाँ जी मैडम, प्रोत्साहन राशि तो मिलती है समय पर, थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है लेकिन आ जाता है पेमेंट, हम लोग खुश हैं।
1: क्या बात है। अब ये बताइए इंदु जी कि HPV टीका प्रदेश की हमारी 14 वर्षीय बेटियों को लगाने का आग्रह किया जा रहा है, तो इस विषय में भी आप हमारी सखियों को जानकारी दें।
0: हाँ जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। अभी जो है सरकार ने HPV का टीका निकाला है जो कि 14 से 15 वर्ष तक की बालिकाओं को लगना है। यह टीका सर्वाइकल कैंसर जैसी, जिसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहते हैं, तो उससे जो है बचाव के लिए ये टीका है। तो मैं एक आशा कार्यकर्ता के रूप में सभी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि वे अपने घरों में जो भी 14 से 15 वर्ष तक की बालिकाएं हैं उनको ये टीका अवश्य लगवाएं। अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल निःशुल्क है टीका, और बालिका का जो है आधार कार्ड साथ में लेके जाएं और इस सरकारी सुविधा का लाभ उठाएं।
1: क्या बात है इंदु जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक और सवाल हम आपसे करते हैं कि एक स्वस्थ भारत के निर्माण में आशा कार्यकर्ता की क्या भूमिका है?
0: एक आशा कार्यकर्ता समुदाय में स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, जो समर्पण, निस्वार्थ सेवा और दृढ़ संकल्प की प्रेरणा देती है। और आशा कार्यकर्ता पहले लोग जो है दूर दराज क्षेत्रों में जाकर घर घर जाकर स्वास्थ्य जागरूकता फैलाते हैं, टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव, मातृ शिशु स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करती है, जो सामाजिक सेवा और जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने का बहुत बड़ा उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोग जो आशा कार्यकर्ता है अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है, और इस तरह से हम लोग एक स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान देती हैं।
1: इंदु जी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, हमारी सखियों को निश्चित रूप से हमारी बातचीत से लाभ पहुंचा होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु जी आप अपनी फरमाइश का अगर गीत बताएंगी तो हमें अच्छा लगेगा, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: हाँ जी, बालिकाओं की बात हो रही है तो मैं चाहूंगी रोजा फिल्म से गाना है दिल है छोटा सा छोटी सी आशा सुना दे दीजिए।

आज रूप लावण्य में बातें हो रही हैं खुशबू की, जी हाँ, इत्र की, परफ्यूम की, जो आपके रूप लावण्य को अनुपम बनाता है। सखियों, इत्र या परफ्यूम का सही इस्तेमाल हमारे व्यक्तित्व और सुंदरता में चार चांद लगा देता है। साथ ही ये हमारे अंदर आत्मविश्वास भी भर देता है और दूसरों पर एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। सखियों, सुंदरता और आकर्षण को बढ़ाने के लिए इत्र का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इत्र हमेशा शरीर के उन हिस्सों पर लगाना चाहिए जहाँ रक्त का प्रवाह त्वचा के करीब होता है और थोड़ी गर्माहट रहती है। गर्माहट से सखियों खुशबू प्राकृतिक तरीके से फैलती है। कलाई, गर्दन और कॉलर बोन के साथ कानों के पीछे इत्र जरूर लगाएं। इत्र या परफ्यूम लगाने के बाद उसे कभी भी हाथों से रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सखियों खुशबू के प्राकृतिक तत्व टूट जाते हैं और उसकी महक बदल जाती है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें सखियों कि इत्र त्वचा पर धीरे धीरे स्प्रे करें या थपथपाकर छोड़ दें। अपनी सुंदरता और खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इत्र लगाने से पहले त्वचा पर कोई अनसेंटेड बिना खुशबू वाला मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन जरूर लगाएं, क्योंकि इससे इत्र या जो परफ्यूम है उसकी खुशबू लंबे समय तक बनी रहेगी। सखियों, इत्र और परफ्यूम का चयन हमेशा मौसम के अनुसार करें। यदि आप ऐसा करेंगी तो महफिल में आपकी तारीफ में वाह वाह होगी। और चलिए अब गीत सुनकर भी आप वाह वाह कह उठेंगी।

बारिश के मौसम में कुछ चटपटा खाने का मन हो तो झटपट चीज कॉर्न चाट तैयार कर सकती हैं। ये स्वाद में लाजवाब, पौष्टिक और बनाने में आसान होती है। तो बस झटपट सामग्री नोट कर लें। स्वीट कॉर्न 1 कप उबले हुए, 1 छोटा बारीक कटा प्याज, 1 टमाटर कटा हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और मक्खन सखियो 1 बड़ा चम्मच, नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच, मसाले स्वादानुसार, नमक आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, चीज कद्दूकस किया हुआ स्वादानुसार और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। और बनाने की विधि तो बहुत आसान है सखियो। जी हाँ, एक पैन में मक्खन गर्म करें, इसमें उबले हुए कॉर्न डालें और 2-3 मिनट तक भूनें। अब इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और जो भी हमने काट कर रखा था मिला दें और इसमें अब लाल मिर्च, चाट मसाला, नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। 1-2 मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर दें। अब ऊपर से नींबू का रस निचोड़ दें और इसे एक सुंदर बाउल में निकालें और ऊपर से कद्दूकस की हुई चीज और हरे धनिया से गार्निश करके गर्मा गर्म परोसे और सबका दिल जीत लें। और चलिए अब हम आपका दिल जीतते हैं और सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: गीत हमने सुन लिया सखियों, और अब कर लेते हैं काम की कुछ बातें। बारिश के मौसम में बिजली के उपकरणों और तारों से सुरक्षित रहने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी हां सखियों, बिजली चमकने पर या भारी बारिश के दौरान टीवी, कंप्यूटर और फ्रिज जैसे कीमती उपकरणों को मैन प्लग से निकाल दें। सीधे मेन लाइन से जुड़े कंप्यूटर का इस्तेमाल कभी न करें। गीले हाथों या नमी वाले हाथों से कभी भी स्विच, सॉकेट या किसी भी उपकरण को न छुएं। जमीन पर या पानी की संभावना वाली जगहों पर एक्सटेंशन कॉर्ड का उपयोग बिल्कुल न करें। अपने घर की अर्थिंग और MCB की जांच किसी प्रमाणित इलेक्ट्रीशियन से जरूर करवाएं, ताकि करंट का खतरा न रहे। साथ ही सखियों, भारी बिजली के झटकों और वोल्टेज स्पाइक से उपकरणों को बचाने के लिए घर में सर्ज प्रोटेक्टर जरूर लगवाएं। तो सखियों, इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो बारिश के मौसम में आप सुरक्षित रहेंगे। अरे, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, हमें बातों बातों में पता ही नहीं चला। चलिए आपको बता दें, कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। अब दुर्गेश नंदनी को दे अनुमति, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। इसमें आज आप सुनेंगे

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। लीजिए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। इसमें पहले सुनिए रत्ना चक्रवर्ती के स्वर में भजन।

इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।

0: पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

अजनबी फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था राहुल देव बर्मन का।

0: ये गीत था फिल्म चांदनी से, जिसके लिए आवाज़ थी सुरेश वाडकर, अनुपमा देशपांडे की, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था शिव हरि का। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
2: पीपल

के साथ मैं अभिषेक कटियार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग अदिपुर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी को अब तक 25 से अधिक देश अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाज चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें ऊर्जा, व्यापार, समुद्री सहयोग और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को नई गति देने पर चर्चा हुई। बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों

0: खाद्य सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई के इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने पर खुशी व्यक्त की।
1: पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 टूरेंट कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण कर उन्हें हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रपति ने इस वर्ष टूर्नामेंट में श्रीलंकाई टीम की भागीदारी पर खुशी व्यक्त की और सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना का पालन करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आग्रह किया। इस अवसर पर रक्षा प्रमुख जनरल NS राजा सुब्रमण्य सहित सेना और नौसेना प्रमुख भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैप्टन बत्रा कारगिल युद्ध में शत्रुओं पर काल की भांति टूट पड़े और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि उनका शौर्य सदैव राष्ट्र सेवा की ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों की बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि जब तक खेतों में करीब 4 इंच यानी 1 बालिश्त की गहराई तक पर्याप्त नमी न हो जाए तब तक बुआई करना जोखिम भरा हो सकता है। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है वे मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए ढेंचा या सनई की बुआई हरित खाद के रूप में कर सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों को सोयाबीन बीज का अंकुरण परीक्षण करने और 70% से अधिक अंकुरण क्षमता वाले बीजों का ही उपयोग करने की सलाह दी है। प्रदेश पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मऊगंज जिले के बिझोली गांव में एक किराए के मकान में चल रही अवैध सिंथेटिक ड्रग निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया है। विंद क्षेत्र में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 1,28,00,000 रूपये मूल्य का मादक पदार्थ, रसायन उपकरण और वाहन जब्त किया है। प्रारंभिक जांच में इस नेटवर्क के तार मुंबई, नागपुर और महाराष्ट्र के अन्य शहरों तक जुड़े होने का खुलासा हुआ है। अशोकनगर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर तीर्थयात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने दिल्ली सराय रोहिल्ला और अशोकनगर के बीच एक ट्रिप विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 26 जुलाई को दिल्ली से रवाना होकर 27 जुलाई को अशोकनगर पहुंचेगी जबकि वापसी में 30 जुलाई को अशोकनगर से चलकर 31 जुलाई को दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, कैंट, ग्वालियर और झांसी सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में कुल 24 कोच लगाए जाएंगे। अब बात मौसम की। प्रदेश में अब तक करीब 7 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है जो सामान्य से केवल 1% कम है। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, छतरपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि प्रदेश के 26 अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के निदान वाटरफॉल में अचानक पानी बढ़ने से फंसे 2 पर्यटकों को प्रशासन ने रस्सियों की मदद से सुरक्षित निकाला। शिवपुरी में स्टेट बैंक RCT द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए CCTV और सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉलेशन का 13 दिवसीय निःशुल्क आवासीय ट्रेनिंग कैंप 9 जुलाई से शुरू होगा। नर्मदापुरम के इटारसी स्थित तवा नदी पुल की मरम्मत के चलते 16 जुलाई तक भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। मैहर नेशनल हाईवे 30 पर डिगरा गांव के पास तेज रफ्तार कार और ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। शनिवार को मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2000

0: 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व परिवर्तनकारी

0: राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
2: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
3: 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
4: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये

0: ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नाशिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, ताहिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर हैं। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश है हमारे इन साथियों की। भाटापारा छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र वर्मा। बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित मोहित। औरंगाबाद महाराष्ट्र से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। इन सभी साथियों ने सुना चाहा है फिल्म पेइंग गेस्ट का ये गीत, जिसके लिए आवाज है किशोर कुमार, आशा भोसले की। गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी और

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है, फिल्म है तेरे घर के सामने, और इस प्यारे से गीत को आवाज़ें दी हैं मोहम्मद रफ़ी ने, और गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है एस डी बर्मन का, और सुनना चाहते हैं हमारे ये साथी नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर जोनले, आरती जोनले, अमलेश्वर महादेव घाट छत्तीसगढ़ से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, और कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, सुनील सिंह, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, शेख मंसूरी, ये सभी साथी हैं।

ये अगली पसंद जो भेजी है हमारी ये साथी हैं सिंहपुर बड़ा से, राजेश नीमा, संगीता, भावना, प्राची नीमा, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा, जासमीन, प्रयागराज भट्ट, धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, काफिर, श्रीमती सविता माखीजा, स्वाति माखीजा। आप सभी श्रोता साथी सुनना चाहते हैं अनारी फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज है लता मंगेशकर मुकेश की, गीतकार हैं शैलेन, संगीत है शंकर जयकिशन का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कुणाल केतन, और ये साथी हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र, सन्मति पंचोलिया, उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूणत, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है असली नकली इस फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज है लता मंगेशकर की, गीतकार है शैलेंद्र, संगीत है शंकर जयकिशन का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेंग बिरक, मीका बिरक। इन साथियों ने सुनना चाहा है तीन देवियां इस फिल्म का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर किशोर कुमार की, गीतकार है मजरू, संगीत है SD बर्मन का।

कार्यक्रम का अगला गीत है जीने की राह फिल्म से, जिसके लिए आवाज है लता मंगेशकर की। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और सुनना चाहते हैं बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली, मीनू राज श्रीमाली। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा।

अगला गीत लिया है हमने फिल्म आराधना से, जिसके लिए आवाज है किशोर कुमार लता मंगेशकर की, और इस गीत को सुनना चाहते हैं हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान सारिका, सुरेखा सोनम बोड़खे और रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया। तो सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर ये गीत।

0: ये था कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण कर उन्हें हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रपति ने इस वर्ष टूर्नामेंट में श्रीलंकाई टीम की भागीदारी पर खुशी व्यक्त की और सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैप्टन बत्रा करगिल युद्ध में शत्रुओं पर काल की भांति टूट पड़े और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों की बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि जब तक खेतों में करीब 4 इंच यानी 1 बालिश्त की गहराई तक पर्याप्त नमी न हो जाए तब तक बुआई करना जोखिम भरा हो सकता है। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर और छतरपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के 26 अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर रांची के सिमलिया स्थित उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में प्रशंसक जुटे और केक काटकर जन्मदिन मनाते हुए उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब आपको बता दें आज शाम की सभा में कौन कौन से जो कार्यक्रम हैं वो प्रसारित होंगे। शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान होगा। शाम 5:33, 6:55, रात 8:15 और रात 10:00 सुनिए फिल्म संगीत। शाम 6:00 सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 8:00 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 पर सुनिए उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राग रजनी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित जगन्नाथ और साथियों द्वारा राग मधु कौंस में शहनाई वादन।

और आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा होगा 7:21 पर। इसमें आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता खरीफ दलहनी फसलों की उन्नत खेती डॉक्टर सुरेंद्र कौशिक से।

ये थे जानकारी हमारे शाम के सभा के कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 1593 किलोहर्ट्ज पर, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। 3:02 हुए हैं, हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है, पर इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा।

AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। 3:02 हुए हैं, हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है, पर इस बीच DTH पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा।